सृष्टि के आरंभ से लेकर हर शुभ कार्य तक सबसे पहले जिनका स्मरण किया जाता है वो हैं प्रथम पूज्य श्री गणेश। श्री गणेश जी केवल विघ्नों का नाश ही नहीं करते, बल्कि मन में विश्वास, बुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करते हैं। आइए उनकी महिमा का गुणगान करते हैं।

सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे जो अंत ओसर लय छड़ाए। सो गुरबाणी दियां इह तुकां दसदियां ने कि हे मेरे मन, सानू उस हरी दा उस परमात्मा दा नाम जपना चाहिदा है जो अंतले समय सानू मौत दे डर तो छुड़ा लवे।

जहाँ माँ की जोत जलती है वहाँ उम्मीद कभी नहीं बुझती। माँ का दरबार हर भक्त के विश्वास और प्रेम का पावन संगम है।

महादेव का स्वरूप हमें सादगी, त्याग और करुणा का संदेश देता है। जो भक्त शिव का स्मरण करता है, उसके मन में साहस और शांति का वास होता है।

मर्यादा, करुणा और धर्म का नाम है प्रभु श्री राम। उनकी जीवन यात्रा हमें सत्य और कर्तव्य के मार्ग पर चलना सिखाती है।

तुम कितनी खूबसूरत हो ये बता नहीं सकते, तुम कितनी खूबसूरत हो ये बता नहीं सकते, अपनी ज़िंदगी में तुम्हारी अहमियत जता नहीं सकते। मेरी ज़िंदगी का हर लम्हा तुम्ही से शुरू होता है, मेरी ज़िंदगी का हर लम्हा तुम्ही से शुरू होता है, तुमसे दूर रहकर एक पल भी हम बिता नहीं सकते। तुम कितनी खूबसूरत हो ये हम बता नहीं सकते। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम बैंड 103.6 मेगाहर्ट्ज़ और नाल दी नाल न्यू जोन एआईआर ऐप वाले सारे ही दोस्तों नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं कहा जी, संडे वाली खूबसूरत मॉर्निंग दा आगाज हो चुका है और प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जलंधर लेके थोड़ा दोस्त आरजे ललित सोनी हाजिर हो चुके हैं। जनाब सो संडे वाली मॉर्निंग दा आगाज हो चुका है प्यारी जी मुस्कान दे नाल। सो तुसी भी प्यारी जी मुस्कान दे नाल, मिठे जे एहसास दे नाल आज दे दिन दी शुरुआत करो। क्योंकि पंछियां दा मिठा मिठा संगीत और ठंडियां मिठियां हवावां थानू जगा रही ने, थानू बुला रही ने कि अज दे दिन दा स्वागत, अज दे दिन दा आगाज करन दा समा हो गया। सो संडे वाला दिन अपनियां नू मिलाउण वाला, अपने आप दे नाल मिलन वाला दिन, दोस्तां मित्रां दे कोल बैठ के उन्हां नाल गल्लां बातां करन वाला दिन, बहुत सारियां उम्मीदां बहुत सारे चा लै के आउंदा है ये छुट्टी वाला दिन। सो इस खूबसूरत दिन नूं होर भी खूबसूरत बनावांगे आपां ठीक 10 बजे तक, क्योंकि मेरा और थोड़ा साथ बनिया रहेगा ठीक 10 बजे तक। 8:30 बजे तक प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जलंधर दे विच इनफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट का तड़का लगता रहेगा, नाल दी नाल गीत संगीत भी थोड़े तक पहुँचता कर दे रहांगे। 8:30 बजे होणगियां पंजाबी दे विच खबरां और 8:40 ते होएगा म्यूजिकली बैक टू बैक सफर अड्डी टप्पा और 9 बजे आगाज़ होएगा पंजाबियों के दिलों की धड़कन, पंजाबी विरसे दियां बातां पाउंदा, पंजाबी गीतां नाल अबरेज प्रोग्राम दिल अपना पंजाबी दा। सो इस प्रोग्राम विच तुसीं भी शिरकत कर सकते हो, दिल खोल के दिल दियां गल्लां कर सकते हो। 9855101027 साडा वट्सएप दा नंबर रहेगा जिथे तुसीं अपने दिल दियां गल्लां दिल खोल के दिल वाले दोस्तां दे नाल कर सकते हो। सो फिलहाल अज दे खूबसूरत सजरी सवेर दा आगाज करदे हां इस खूबसूरत जे गीत दे नाल, ते जिंदगी नूं एक मिठा जिहा हुलारा दिंदे हां और प्यार दे नाल मुहब्बत दे नाल मिठी जी प्यारी जी मुस्कान दे नाल अज दे दिन दी शुरुआत करदे हां। मिलदे हां इस गीत तो बाद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जलंधर दियां गल्लां बातां दे नाल।

102.7 MHz, 103.6 MHz, प्रोग्राम इंजॉय कर रहे हो। गुड मॉर्निंग जलंधर, अपने दोस्त ललित दे नाल। सो गल्लबातां चल रही ने प्रोग्राम दे विच स्पोर्ट्स जगत की दुनिया बारे। सो स्पोर्ट्स जगत की दुनिया की गल करिए तो हुण गल करांगे क्रिकेट की। सो क्रिकेट दे विच लगातार दो बार T20 वर्ल्ड कप चैंपियन टीम इंडिया के लिए नवे सीजन की शुरुआत जी है वो अच्छी नहीं रही। कल इंग्लैंड के खिलाफ खेडे गए पांच मैचों की सीरीज़ के दूसरे T20 के भारत को जड़ा है 4 विकेट के नाल हार का सामना करना पड़ा। सो ए फॉरमेट के भारत की लगातार तीसरी हार है। इस तो पहलों आयरलैंड दौरे पर टीम 0-2 के नाल हारी सी और इस तरह भारत 3 T20 मैच लगातार हार चुका है जो कि अक्तूबर 2021 तो बाद पहली बार होया है। सो बहुत सारे यहोजे फैक्टर रहे जिन्हें जिस करके जरा टीम इंडिया जरा इस मैच को गवा बैठी। सो भारतीय टीम के 3 बैटर्स जड़े ने अर्धशतक यानी कि हाफ सेंचुरी तो जड़ा वांझे रह गए जिस अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और श्रेष अयर। और रवि बिश्नोई के 17वें ओवर के जी 3 नो बॉल हुई वो करके भी मैच जड़ा है भारत के हथों फिसल गया। तो बाकी कदे कदे अजिहा भी हो जाता है। सो जित हार मैदान दे विच चलती रहती है पर जित हार तो सबक सीख के अगली बार दोबारा दुगनी फोर्ते नाल मेहनत दे नाल दोबारा फिर तो मैदान दे विच जुट जाना चाहिए था, मैदान दे विच पहुंच जाना चाहिए था। यही एक सच्चे खिडारी की निशानी है। बीतियां हारां तो सबक लैके अगे आउण वालियां खेडां दे विच अगे आउण वाले मैच दे विच अपना बेहतरीन प्रदर्शन करे। फिलहाल चलते हैं अगले खूबसूरत गीत वाल। गुरनाम भुल्लर की खूबसूरत आवाज़ दे विच ये गीत सुनते हैं और मिलते हैं इस गीत तो बाद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जलंधर दीआं खूबसूरत गल्लां बातां दे नाल।

एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम बैंड 103.6 मेगाहर्ट्ज़ और नाल दी नाल न्यू जोन एआईआर ऐप वाले दोस्तों एक बार फिर तो प्यार परी सत श्री अकाल। मैं क्या जी हुण जरा अपने रेडियो सेट की आवाज़ चक के रखियो क्योंकि जनाब पैन लगा है रोला रप्पा, प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है अड्डी टप्पा। सो बैक टू बैक पंजाबी गीतों का आनंद तुसी माण सकोगे ठीक 9 बजे तक, और 9 बजे आगाज़ होएगा थोड़े और मेरे सब दे फेवरेट वाले प्रोग्राम दिल अपना पंजाबी दा, जिथे तुसी दिल खोल के दिल दीयां गल्लां कर सकदे हो, चंगा लिखदे हो, चंगा गाउंदे हो या फिर किसी का लिखा गीत कविता नज़म थानूं बेहद पसंद है, थोड़े कोल कोई पंजाबी विरसे दी बुकल दे विच सांभियां होईयां किस्से कहानियां कोई यादां थोड़े कोल सांभियां पईयां ने, तुसी उस याद नूं साडे नाल सांझा कर सकदे हो या फिर तुसी साडे स्रोतियां नूं

0: यार राहुल, मैं काफी दिन तो तेनू देख रहा है, तू काफी बुझा बुझा जा, उदास उदास जा लगदा है, की हो गया?
1: की दसा यार, काम दा प्रेशर इन्ना है ना, मैनू लगदा है ना मेरी जिंदगी बोझल हो चुकी है। हुण तू ही दस, मैं इदां दा की करां कि जिंदगी च बुल्ले लुट सकां ते सुकून नाल रवां।
0: लै मित्रा, घबराउण वाली नहीं कोई गल, अपने कोल इहदा वी हल।
1: की
0: जे तू चाहुंदा है तेरी रूह नूं मिले सुकून, ते कर मित्रा FM Rainbow New Tune।

0: पेरेंट्स कहते हैं एडजस्ट कर लो। पोइम का टाइटल भी मैंने यही रखा है, एडजस्ट कर लो। जी हाँ, इन्होंने हिंदी दे विच सानू ए खूबसूरत जी एहसास लिख के भेजे हुए ने। सो इन्हों उस एहसास नू जिहड़ा है पढ़न की कोशिश करांगे, जिस एहसास दे नाल इन्होंने लिखा है। लिखा है कि बाबुल के घर से विदा होकर जब वह एक नए घर आई, बाबुल के घर से विदा होकर जब वह एक नए घर आई, खुशियों की उम्मीदें लेकर सपनों की डोली सजाई, पर जब ताने और तमाचों से उसकी रूह छटपटाई, तब माँ ने रोती बेटी से बस एक बात दोहराई, वो ससुराल है तुम्हारा, वो ससुराल है तुम्हारा, थोड़ा एडजस्ट कर लो। जब स्वाभिमान को कुचलकर हर रोज तमाशा होता है, सपनों की अर्थी उठती है और अंदर कुछ मरता है, जब जुल्म की हदें पार हुई, उसने सिसक सिसक कर पूछा, जब जुल्म की हदें पार हुई, उसने सिसक सिसक कर पूछा पिता से, तो माँ ने भी फेर ली आंखें, कहा जमाने की प्रथा है, मैं भी तो सहती आई हूँ, तुम भी एडजस्ट कर लो। जहर को अमृत कहकर कब तक घूट घूट पीना होगा, अपनी ही खुशियों की कब्र पर कब तक ऐसे जीना होगा, अगर सहना ही औरत का मुकद्दर है, तो ये कैसी रीत है, हर चीख को दबाकर समाज बस यही एक सुर गाती है, दीवारें ऊंची हों उस घर की, चुपचाप एडजस्ट कर लो। धिक्कार है ऐसे एडजस्ट पर जो आत्म सम्मान को खो जाए, धिक्कार है ऐसे एडजस्ट पर जो आत्म सम्मान को खा जाए, जो जीती जागती बेटी को जीते जी लाश बना जाए। अब बंद करो ये कहना कि सहना नहीं नारी का गहना है, माता पिता की इस हिदायत का अब हर बेटी को अंत करना है, अब बहुत हुआ ये तमाशा, मत कहो एडजस्ट कर लो, मत कहो एडजस्ट कर लो। सो बाकी बहुत ही खूबसूरत कविता और एक औरत दी दर्द दी कहानी नू जड़ा है तुसी अपने शब्दों दे विच पिरो के साढ़े तक पहुँचाया है। और ये सानू लिखा है, ये मैसेज यानी सूरज चौहान ने किया है जी। ये बहुत बहुत शुक्रिया जी, तुसी ये खूबसूरत मैसेज साढ़े तक पहुँचाया और इस दर्द नू जड़ा है तुसी बयान किया है। वाकई ए हमेशा जड़ा या एक औरत नू एक नारी नू ए चीज़ां सहनियां पैंदियां ने कि तेनू एडजस्ट करना पएगा, पर जिस घर दे विच गई आ उस घर वालियां नू भी थोड़ा जिहा सोचना चाहीदा है, भी उन्हां नू भी थोड़ा एडजस्ट करना चाहीदा है। कोई नवां मेहमान तुहाडे घर आउंदा है, उहदे भी कुछ नवीं उम्मीदां नवीं चाह ने, उहदे भी कुछ दिल दीआं ख्वाहिशां ने, उहदा कतल ना कीता जाए। सो बहुत बहुत शुक्रिया तुसीं अपने विचार साडे नाल सांझे कीते। सो एक होर वॉइस मैसेज पहुंचिया, आओ सुणदे आं।
1: दिल अपना पंजाबी प्रोग्राम पेश कर रहे साडे वीर जी अते समूह श्रोते लहिंदे पंजाब ते चढ़दे पंजाब दे सारयां वीरां नूं मेरे वल्लों गुरविंदर बीर सिंह पट्टी अते दविंदर सिंह भाटिया वल्लों सारयां जणयां नूं सति श्री अकाल जी। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਐਤਵਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਜੇ ਛੱਲੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਗੰਨੇ ਵਗੈਰਾ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਛੱਲੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਛੱਲੀਆਂ ਭੁੰਨ ਕੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਡੰਗਰ ਚਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਣਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਪੱਕਣ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਦਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਬਣੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਨਾ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਲਕੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 3 ਰਸਤੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਨਲਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਪਰ ਰਸਤੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਲਕੇ ਲਵਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਗੱਲ, ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਜਵਾਨੀਆਂ।

102.7 FM रेनबो 103.6 MHz और नाल दी नाल न्यूज़ ज़ोन AIR ऐप ते प्रोग्राम दिल अपना पंजाबी दा आनंद माण रहे हो अपने दोस्त ललित सोनी दे नाल। प्रोग्राम दिल अपना पंजाबी दे विच तुसी दिल खोल के दिल दीआं गल्लां कर रहे हो जनाब। नंबर है 98 55 10 10 27 जिस ते तुसी अपनियां दिल दीआं गल्लां चंगा लिखदे हो चंगा गाउंदे हो या फिर किसी दा लिखिया गीत कविता नज़म पोएट्री शायरी तुहानू बेहद पसंद है तुहाडे दिल दे बेहद करीब है ते तुसी उस नू बोल के गा के लिख के सानू भेज सकते हो। तो फिलहाल मैं थोड़े कोलों जानना चाह रहा सी कि तुसी बचपन दे विच कदे फलदार रुखां नू वटे जां रोड़े मार के उहनां दे फल तोड़ के खाधे ने या फिर तुसी कदे खेतां दे विचों छलियां गन्ने तोड़ के खाधे होण या उपरों खेत दा मालक आ गया होवे ते तुहानू झटका या कुट पई होवे और इस मिठी जी याद नू साडे नाल तुसी सांझा कर सकदे हो। बहुत सारे दोस्त सानू अपनियां यादां अपनी मिठियां मिठियां आवाज़ां अपनियां लिखतां सांझियां कर रहे हैं और तुसी भी इस प्रोग्राम दे विच

0: आनंद माण सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सो एक होर वॉइस मैसेज साझा करते हैं और इस तो बाद चलेंगे एक खूबसूरत गीत वाल।
1: हेलो दिल अपना पंजाबी ललित सोनी सर जी, वेरी गुड मॉर्निंग सारे दोस्तों नु, प्यार भरी सत श्री अकाल नमस्कार। एक धरती माता एक मां नु कह रही है, एक मां धरती माता नु सवाल कर रही है। एक मां ने धरती मां से कहा कि तू कितनी बड़ी भाग्यशाली है, तेरे हकदार सदा करते तेरी रखवाली है। बंजर होने पर भी लोग तुझे पाने को तरसते हैं, तेरे लिए भाई भाई भी लड़ जाते हैं। पर मैं तो एक माँ हूँ, मुझसे क्यों हर कोई पीछा छुड़वाता है। बुढ़ापे की दहलीज लांघते ही क्यों हर कोई मुझे आंख दिखाता है। माना मेरे हाथ पैर कमजोर पड़ गए, पर मैंने भी बहुत कुछ कमाया था। जो ठुकराते हैं आज मुझको, उनके लिए सुख चैन अपना गवाया था। ए एक मां धरती माता नूं सवाल कर रही है, जिहड़ा एक कविता दे रूप विच रूपांतर कीता गया है
0: जी।
1: ते ललित सोनी साहब जी तुहाडे विचार, जसवीर सिंह दुल्ला जी, जसवीर सिंह अरोड़ा जी, सतनाम सिंह रखड़ा जी, ए साडे एफएम रेनबो दे बड़े प्यारे मित्र हन। हर ऑडियो विच तारीफ करदे हन, इन्हां दा तहे दिल तो शुक्रिया। सारयां दे विचार बहुत वधिया हन।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया जी, किरण नरोला जी, अपने खूबसूरत विचार साढ़े नाल सांझे करन दे लिए बहुत शुक्रिया थोड़ा, और धरती की महानता के बारे गलबात करन दे लिए कविता के जरिए थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल दोस्तों चलते हैं खूबसूरत गीत वाल, वेला हो गया एक गीत का, और इस गीत तो बाद फिर तो थोड़िया प्यार भरिया आवाज़ा जिहड़ियां सुनांगे और थोड़े विचार जाणांगे।

0: मुझे शर्म आती है।
1: देखो तुम नहीं कहोगी तो मेरी जान निकल जाएगी।
0: I love you।
2: यह

0: कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111
1: नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं नीलम अलकानिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। साथियों, जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारा ये कार्यक्रम मन की बात का विस्तार है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार मन की बात में हमारे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात कही है, साथ ही देश को उन्होंने प्रेरणा दी है कि हम आत्मनिर्भर तो हों लेकिन अपनी सेनाओं के बारे में हम और अधिक जानें, उस कार्य प्रणाली को समझें और साथ ही जो हमारे मन में हमारी सेनाओं के लिए सम्मान है, हमारे सशस्त्र बलों के लिए सम्मान है, उसे हम गाढ़ा भी करते जाएं, क्योंकि ये काम आसान तो नहीं है जो हमारे बल हमारी सेनाएं हमारे लिए करती हैं। हमारे हर पर्व पर एक एहसान हमारे फौजियों का है, वो सीमा पर तैनात हैं, इसलिए हम सीमा के भीतर सुरक्षित हैं और खुश भी हैं। तो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता क्यों जरूरी है, कैसे होगी, अभी तक हमारी उपलब्धियां क्या हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल हो सकता है आपके मन में भी हो। हम इन सभी सवालों के जवाब आपको देंगे। इस समय स्टूडियो में हैं हमारे विशेषज्ञ मेजर जनरल संजय मेस्टन हैं, भारतीय थल सेना के सेवानिवृत्त अधिकारी। एयर कमोडोर डॉक्टर अश्विंदर सिंह बहल हमारे साथ हैं, वायुसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी। कमांडर विक्रमजीत सिंह हैं, नौसेना से सेवानिवृत्त अधिकारी। आपका बहुत बहुत स्वागत।
2: थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच।
3: जय हिंद।
1: जय हिंद सर। तो ये सारे सवाल जो आपके मन में होंगे साथियों, आपको इनका जवाब आज मिलेगा, बहुत रोचक तरीके से मिलेगा और बेहद साधारण सी भाषा में मिलेगा, जो आप और मैं यानी हम सिविलियन आसानी से समझ पाएंगे। लेकिन पहले मैं आपको सुनवा रही हूँ मन की बात का वो हिस्सा जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख किया है, सुनिए।
4: मेरे प्यारे देशवासियों, हाल ही में मुझे कोलकाता में नौसेना से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। वहाँ INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। साथियों, जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी मजबूत हो रहा है। DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है, यानी आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: तो सुना आपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने किस तरह से हमें प्रेरित किया है। आइए अब अपने सवाल हम सीधे अपने विशेषज्ञों तक लेकर जाते हैं और इनके जवाब जानते हैं। तो संजय मेस्टन सर, सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, जब हम रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो ये क्यों जरूरी है?
5: पहली बात धन्यवाद और जय हिंद। आपके इंट्रोडक्शन में दो मेरे को पॉइंट्स बड़े अच्छे लगे। एक, आपने बोला कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने बोला है कि लोगों को फौज के बारे में पता होना चाहिए, और दूसरा आपने ये भी बोला कि हम सिविलियन को पता होना चाहिए। तो एज अ यूनिफॉर्म पर्सन हम, मैं तीनों के बिहाफ पे बोल सकता हूँ कि सिविल और यूनिफॉर्म की बात नहीं है।
1: जी,
5: आम तौर पे इट

0: यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि
1: जी सर।
0: घर वाले भी हमारे ना वो शब्द नहीं पसंद करते, सिविल। एनीवे, देखिए प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सही बोला है, लोगों को भारतीय सेना के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार देश में तीन पिलर्स होते हैं, खासकर पॉलिटिकल लीडरशिप होती है,
1: जी
0: इकोनॉमिक होता है और डिफेंस, ये सबसे जरूरी तीन चीजें हैं और इकोनॉमी और डिफेंस को रिलेटेड है। तो इसीलिए मैं सोचता हूँ देशवासियों को पता होना चाहिए कि सेना क्या है,
1: जी सर।
0: अब आत्मनिर्भरता भारत क्यों जरूरी है। देखिए आपने एक और अच्छा शब्द बोला, बहुत सीधी सरल भाषा में हमें बताना चाहिए, और वही मैं सोचता हूँ। देखिए आम जनता के लिए ये पता होना चाहिए कि एक डिपेंडेंसी होती है, जैसे कोविड के टाइम में आप देखिए कि
1: जी सर।
0: जो भी घर में कोई भी फार्मर था या कोई भी इंसान, उसने घर में सब्जियां उगा रखी थी, सब कुछ उगा रखा था, तो उसको क्या है कि कोविड के दौरान कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। लेकिन अगर कोई दूसरा आदमी किसी दुकान पे, एक ही दुकान पे निर्भर है,
1: जी
0: और वो दुकान भी बंद हो जाती, या वो दुकानदार बोलता है मैं नहीं दे सकता हूँ, मेरे पास स्टोर खत्म हो गया, तो आप सोचिए वो क्या हाल हो जाता है। तो ये छोटा सा मैं घरेलू एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सेना में आत्मनिर्भरता इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम लड़ाई के लिए जाते हैं तो हमारे जवान और ऑफिसर्स वो इक्विपमेंट के साथ लड़ते हैं, और वो इक्विपमेंट में एक कॉन्फिडेंस, भरोसा जब आता है, जब हमें पता ये हमारे द्वारा ही बनाया गया है और हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बना है, जिस
1: जी
0: टेरेन में हम लोग रहते हैं, जिन पहाड़ों में रहते हैं या जिन कोल्ड कंडीशंस में रहते हैं। तो कहने का मतलब है आत्मनिर्भर भारत बहुत जरूरी है, और आज जो हमारी डिपेंडेंसी है बाहर देशों में ऑलमोस्ट खत्म होती जा रही है, और आज भारत सेल्फ रिलायंट देश है, जो खुद चाहे AI हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे रॉकेट्स हो, एयरफोर्स हो या नेवी हो। तो कहने का मतलब है ये सारी चीजें एक दिखाता है कि एक कंट्री के अंदर सेल्फ रिलायंस है और एक पावर है। जब हमारे पास सब कुछ है तो हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, और देश में हमारी सेना को पूरा एक भरोसा होता है कि जो हमें लड़ाई के लिए चाहिए, लॉजिस्टिक से लेकर सब कुछ, वो हमें स्पेयर पार्ट से लेकर सब मिलता रहेगा। तो ये
1: जी
0: है आत्मनिर्भर भारत, और ये पिछले मैं बोलूंगा एक डिकेड के अंदर या 10 साल में इसमें बहुत तीव्रता हमने देखी है। तो
1: जी
0: छोटे से सारांश में ये है आत्मनिर्भर भारत।
1: यानी हमारे पास अपनी बनाई हुई अगर चीजें रहेंगी तो एक तो हमें भरोसा रहेगा कि हमारी जरूरत के हिसाब से है, दूसरा अगर हमें उसके कुछ पार्ट्स चाहिए तो वो हमें समय पर मिलेंगे, हमें किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तो डॉक्टर अश्मिंदर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हम मॉडर्न एज में वॉरफेयर्स जो है उसमें काफी बदलाव देख रहे हैं, तो आप अपने अनुभव से बताएं कि इन दिनों क्या नई तकनीक आ रही है और क्या भारत में वो उपलब्ध है या अभी भी हम उसे इंपोर्ट कर रहे हैं।
2: बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने, और जो जनरल साहब ने बताया और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, मैं उसको आगे लेके जाना चाहता हूँ।
1: जी
2: 1991 में, 1991 में एक पिक्चर आई थी सौदागर, उसमें एक बड़ा इंटेंस डायलॉग था
1: जी
2: राजकुमार जी का और उनके साथ दिलीप कुमार जी।
1: जी
2: तो उस डायलॉग को वो ऐसे शुरू करते हैं, मैं तुम्हें मारूंगा और जरूर मारूंगा, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, वो गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा।
1: जी
2: ये वो वक्त आ गया है जिसको मैं कहता हूं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इस वक्त के अंदर हम जिस तेजी से इंडिजिनाइजेशन कर रहे हैं उसका आने वाले 10 साल में बहुत फायदा होगा। आपने बताया जो युद्ध में टेक्निक्स चेंजेस आए हैं, सबसे पहला चेंज आया है कि अब जो युद्ध है वो बियॉन्ड विजुअल रेंज हो गए हैं, यानी कि आमने सामने भी फौजें नहीं आती हैं, लेकिन इतना डिस्ट्रक्शन हो जाता है कि जिससे पूरी इकोनॉमी देश की हिल जाती है। आपने रशिया यूक्रेन का युद्ध देखा, आपने ईरान का देखा, आपने देखा कि पहले तो फाइटर जहाज टैंक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, लेकिन अब ड्रोन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, ना केवल लंबी दूरी से अटैक लेकिन बहुत सस्ते सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हुए भी उतनी भारी इकोनॉमिक डैमेज, रिफाइनरीज पे आग, गैस के एरियाज, प्रोडक्शन साइट जैसे रास लाफान था उसके ऊपर हमला कतार के अंदर, तो उसका देखिए 3 से 8 साल लगेंगे उसको वापस 100% प्रोडक्शन कैपेसिटी में आने के लिए, कितना बड़ा पूरे विश्व के लिए वो नुकसान है। तो ये जो छोटे छोटे सिस्टम भी है ये भी आउट ऑफ प्रोपोर्शन रिजल्ट कर सकते हैं। और एक और बड़ी अहम चीज आ जाती है आज के जमाने के अंदर, हम जब इंपोर्ट करते हैं डिफेंस इक्विपमेंट बड़ी महंगी होती है। अब देखिए हम रफाल जहाज लेना चाहते हैं 114, 3.25 लाख करोड़ के हैं ये, 3.25 लाख करोड़ के, कितना हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो $40 बिलियन के करीब चला जाएगा दूसरे देश में फ्रांस के अंदर। तो अगर हम इंडिजिनाइजेशन बढ़ाते हैं

0: कोई बड़ी अच्छी चीज मैं जनरल साहब ने जो इनकी आर्मी ने की है, 91% एम्यूनिशन जो है आज इंडिजनाइज हो गया है, यानी कि भारत के अंदर ही प्रोड्यूस होता है 175 में से 159 डिफरेंट टाइप की एम्यूनिशन वो आज भारत के अंदर ही बनती है। और पिछले अगर हम दशक में देखें उससे पहले, तो उस दशक के अंदर हम देखते थे कि हमारी जो इम्पोर्ट थी वो 70% थी बाहर से, आज 65% हम भारत के अंदर ही प्रोक्योरमेंट जो है भारत के अंदर ही बनाते हैं। 1.54 लाख करोड़ पिछले साल का था डिफेंस प्रोडक्शन, इस साल का है 1.78 लाख करोड़ डिफेंस प्रोडक्शन। हमारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट था 23,622 करोड़ से बढ़कर 38,424 करोड़, यानी कि 63% बढ़ गया है, और आने वाले समय में 50,000 करोड़ हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम ना केवल फॉरेन एक्सचेंज को बचा रहे हैं, हम फॉरेन एक्सचेंज बना भी रहे हैं डिफेंस एक्सपोर्ट से। और लास्ट चीज जो इस पे मैं कहना चाहता हूं कि एम्प्लॉयमेंट, सोचिए सैकड़ों आज इंडस्ट्रीज बन गई हैं, एमएसएमईज बन गई हैं, जो गवर्नमेंट की अदिति पॉलिसीज हैं, आईडेक्स पॉलिसीज हैं, या दूसरे जो प्रोत्साहन के मटेरियल हैं, या जो हम को डेवलपमेंट कर रहे हैं। आपने बताया ना प्रधानमंत्री जी कह रहे थे C2958, उससे 15,000 जॉब्स बढ़े हैं, उसी तरीके से ब्रह्मस से 25,000 बढ़े हैं, दूसरे बड़े बड़े LCH प्रोजेक्ट है उससे भी 20,000-25,000 जॉब्स बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो 1,10,000 जॉब्स हमको सिर्फ दो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं जो यूपी और तमिलनाडु है 2027 तक वहां पे बढ़ेंगे, तो पूरे देश के अंदर एक इकोनॉमिक रेवोल्यूशन ला सकते हैं जब हम इंडिजनाइज करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं डिफेंस इक्विपमेंट को।
1: जी, यानी हम स्वदेशी को बढ़ावा तो दे रहे हैं हर फ्रंट में, लेकिन जब हम रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण की बात करते हैं तब भी बहुत सारे फायदे उसके हैं, और डिपेंडिंग इंडस्ट्रीज जो हैं उनको भी लाभ मिलता है, और पूरा एक इकोसिस्टम है जो मजबूत होता है। जी, आपने फिल्म के डायलॉग से शुरुआत की थी, तो मैं आपसे ही जानना चाहूंगी कि आपकी पसंद का कौन सा गाना हम यहाँ श्रोताओं को सुनवाएं।
0: देखिए, बहुत अच्छा एक शब्द है, मैं चाहता हूँ कि हमारे श्रोताओं को सुनाइए।
1: जी,
0: देव सेवा पर मोहे अहे शुभ कर्मन ते कभो न टरो न डरो असो जब चाहे लरो निश्चय कर
1: अपनी जीत करो। जी जी, हमारे स्कूल्स में ये प्रार्थना भी होती थी और हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं यही शब्द।

0: इस शब्द के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज हम इस कार्यक्रम में बात कर रहे हैं रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण की। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने की बात की और साथ ही इसके महत्व को समझने के लिए भी हमें प्रेरित किया। हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में है। अब मैं कमांडर विक्रमजीत सिंह से जानना चाहूंगी, सर आप नौसेना में स्वदेशीकरण को किस तरह से देखते हैं और क्या इसका महत्व है?
1: पहली बात तो जय हिंद आपके सारे श्रोताओं को। नौसेना मैं ये बड़े गर्व से कहना चाहूंगा, आप सबको बताना चाहूंगा कि नौसेना वॉज द फर्स्ट मूवर, यानी कि प्राथमिक जो कदम लिए गए वो नौसेना में लिए गए एज फार एज इंडिजनाइजेशन इज कंसर्न। देखिए हम लोग जब स्वतंत्र हुए थे, जब हमें आजादी मिली थी 47 में, तो हम लोग ऑब्वियसली एक ब्रिटिश कॉलोनी थे, तो उनके कुछ एसेट्स हमारे पास 30-35 जहाज उस टाइम भारतीय नौसेना को मिले, मोस्टली वो ब्रिटिश ओरिजिन ही जहाज थे। उधर से जो नेवी शुरू होकर आज अगर आप देखते हैं तो हमारे पास 150 से ज्यादा जहाज हैं, जिसमें से आप मान के चलिए ऑलमोस्ट 60-70% से ज्यादा हमारे जहाज इंडिजिनियसली डेवलप्ड है
0: जी।
1: तो अगर आप नेवी का रोल देखते हैं, आप हिस्ट्री देखेंगे, तो कैसे हमारे एसेट्स बढ़े, मतलब 1960 में हमारे पास विक्रांत आया, पहले वो भी एक इंग्लिश ओरिजिन जहाज था
0: जी।
1: उसके बाद हमें रशियन से सपोर्ट मिलनी शुरू हुई 60 के दशक में, उन्होंने हमें सबमरीन दिए, उन्होंने हमें कोई और वेसल्स दिए, लेकिन 70 और लेट पार्ट ऑफ 70s में हमने अपना स्वदेशीकरण कार्यक्रम शुरू कर दिया था
0: जी।
1: हमने गिरी क्लास शिप्स बनाए, उदयगिरी क्लास जो थे, नीलगिरी क्लास शिप्स, लियांडर्स थे वो ब्रिटिश डिजाइन के, लेकिन वो बनाने शुरू किए। उसके बाद हमने गोदावरी क्लास शिप बनाने शुरू किए और धीरे धीरे धीरे हमारी जो डिजाइन कैपेबिलिटी है और हमारी जो इंडस्ट्री है वो धीरे धीरे धीरे मच्योर होती रही कि और आज ये हाल है कि आप हर एक 40 दिन में, आप मान के चलिए 6-7 हफ्ते में हम एक शिप लॉन्च कर रहे हैं इस स्पीड पे। और अभी आपने रिसेंटली देखा माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 शिप एक दिन पे जो कमीशन किए हैं वो अपने आप में हिस्ट्री में आई थिंक पहली बार हुआ है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि 3 बड़े जहाज, छोटे जहाजों की बात नहीं हो रही है, दूनागिरी जो एक फ्रिगेट है खुद ही 7,000 टन के करीब उसकी डिस्प्लेसमेंट, संशोधक सर्वे वेसल लार्ज वो भी 2,500-3,000 की उसकी डिस्प्लेसमेंट, अग्रे मिसाइल जो हमारा शैलो वाटर क्राफ्ट, तो इस लेवल पे हम पहुंच गए हैं। ये मैं आपको कहना चाहूंगा नीलम जी, जब हमने 1990 में जब हमने फौज ज्वाइन की थी तो सारे हमारे एसेट्स मोस्टली तो रशियन ओरिजिन थे या कुछ ब्रिटिश थे जो कि अपने लास्ट लेग ऑफ द सर्विस में थे, क्योंकि ये जो हमारे शिप्स होते हैं इसमें इसकी लाइफ करीब 25-30 साल आप मान के चलिए। देखिए नेवी में एक और बड़ी खास चीज है कि वो सारी सर्विसेज की जो है उसका एक तरह से मिलन है या एक तरह से मिलोंजे है जिसको बोलते हैं। जैसे हमारे पास देखिए लैंड यूनिट्स भी हैं, हमारे पास एयर यूनिट्स भी हैं, हमारे पास सरफेस यूनिट्स हैं
0: जी,
1: और हमारे पास सब सरफेस यूनिट्स हैं, यानी कि हम चारों डायमेंशन में नेवी जो है वो अब देश की सेवा में और देश की हिफाजत में जुट है। तो इसमें मैक्सिमम जो इंडिजनाइजेशन आप देख रहे हैं अभी वो हमारे सरफेस यूनिट्स में बहुत इंडिजनाइजेशन एडवांस हो गई है
0: जी।
1: जबकि यू नो आजकल तो ऐसा है कि आप 60-70% के बिना तो आप एक शिप बना ही नहीं सकते, वो आपका मैंडेटरी है, आपको उतना तो इंडिजनाइजेशन कंटेंट रखना ही रखना है। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा इसी सवाल के उसमें नीलम जी, के एक शिप में बनाने के 3 मुख्य पार्ट होते हैं, हम डिवाइड कर सकते हैं उसको। एक हम कहते हैं फ्लोट, यानी शिप को तैरना होता है जरूरी, जो उसकी बॉडी होती है, हल होता है। दूसरा होता है उसका मूवमेंट, यानी शिप को आपने एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना
0: जी।
1: उसके लिए आपको इंजन चाहिए, प्रोपेलर चाहिए, इत्यादि जो भी इक्विपमेंट चाहिए। और तीसरा होता है लड़ना, कि आपने मिसाइल डालने हैं, गाइडेड मिसाइल सिस्टम है, एंटी एयर कैपेबिलिटी क्या है, एंटी सबमरीन कैपेबिलिटी क्या है, तो वो सबसे मुख्य पार्ट है
0: जी।
1: क्योंकि फाइनली ये सारे वॉरशिप हैं और इनका मेन काम है लड़ना। लेकिन इन सब में आज की डेट में जो हमारा फ्लोट में हमने करीब 90% इंडिजनाइजेशन हो गया है और फाइट में हमारी थोड़ी कैपेबिलिटी अभी इस पे काम करना अभी बाकी है।
0: चोल साम्राज्य के समय से हम अपनी नौसेना पर गर्व करते आ रहे हैं, हमारे जल सीमाओं के प्रहरी, और अब अलग अलग हिस्से हम उसके बारे में सुनते रहे थे। INS विक्रांत पर तो पूरे देश को गर्व है ही। आपने बताया कि किस प्रकार से स्वदेशीकरण की शुरुआत हुई और लगातार बेहतर होता जा रहा है, तो इसी मोड पर मैं आपकी पसंद का एक गाना श्रोताओं को सुनवाना चाहूंगी।
1: नीलम जी मैं चाहूंगा कि आप, ये एक गीत है फिल्म लक्ष्य का, क्योंकि हमें अपनी अकेडमी डेज के बारे में और बहुत मोटिवेट करता है। गीत है हाँ यही रास्ता है, बहुत ही मोटिवेटिंग गाना, आई एम श्योर सब लोगों को, सर को और वापस अकेडमी लेके जाएगा ये
0: जी। तो हम श्रोताओं को सुनवा रहे हैं।

0: आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस प्यारे से गाने के बाद पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज हम बात कर रहे हैं इस कार्यक्रम में रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के बारे में। हमारे विशेषज्ञ हैं इस समय स्टूडियो में हमारे साथ, मेजर जनरल संजय मेस्टन हैं भारतीय थल सेना से, हमारे साथ हैं एयर कमोडोर डॉक्टर अश्मिंदर सिंह बहल वायुसेना से, और कमांडर विक्रमजीत सिंह हमारे साथ हैं नौसेना से। हमारे विशेषज्ञ हमें बता रहे हैं स्वदेशीकरण का महत्व और पिछले दिनों क्या बदलाव हुए हैं अपने अनुभव के आधार पर। तो संजय मेस्टन सर, एक बार फिर से मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आपने क्योंकि सर्विस में रहते हुए बहुत सारे देशों की यात्राएं की हैं, वहाँ के कार्यप्रणाली को बहुत नजदीक से आपने देखा है, समझा है, आप ये बताएं कि जब हम स्वदेशीकरण की बात करते हैं, क्या इसका एक पहलू ये भी है कि जो हमारे ब्लूप्रिंट्स हैं या जिसे हम ट्रेड सीक्रेट कहते हैं वो हमें तक रहे, हमें साझा ना करने पड़े किसी के साथ, और जब वो सिर्फ हम तक रहेंगे तो हम उसमें तेजी से बदलाव कर सकते हैं और हमारी क्या ताकत है उसे हम छिपा कर भी रख सकते हैं, क्या एक पहलू ये भी है इसका?
1: बिल्कुल नीलम, एक पहलू वो भी है। देखिए, पहली बात ये, एक जो भी स्वदेशीकरण है ये एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। देखिए, इकोसिस्टम में बहुत कुछ चाहिए होता है, किसी भी, चाहे एक एयरक्राफ्ट को बनाना हो, चाहे जहाज को बनाना पड़े, चाहे मिसाइल को बनाना पड़े, चाहे ड्रोन को बनाना पड़े, उसमें बहुत कुछ चीजें हैं। एक स्टार्टिंग पॉइंट हो जाता है, एक बैटरी चाहिए, पावर, फिर चाहिए आपको, सबसे बड़ी चीज जो आज की तारीख में चाहिए है वो है आपको चाहिए हैं ये सेमीकंडक्टर्स, वो स्टार्ट पॉइंट हो जाता है, ब्रेन हो जाता है, जो चिप्स होते हैं। और ये एक खुद बहुत बड़ा, इसमें मैं बोलूंगा कि ये एक इकोसिस्टम है। आज कोई भी देश विश्व में ये टेक्नोलॉजी पूरी नहीं है कि पूरा एक सेमीकंडक्टर चिप वहां पर बन जाए। उदाहरण के तौर पे जो डिजाइनिंग होती है, ये जो चिप डिजाइन, ये स्टार्ट कहाँ होते हैं? अमेरिका में। मैन्युफैक्चर कहाँ होते हैं? ताइवान में। उसके पास जो ट्रांजिस्टर लगते हैं वो कहाँ होते हैं? वो होते हैं साउथ कोरिया में। जो चिप की काटना पड़ता है, जो लिथोग्राफी मशीन होती है, वो कहाँ से आता है? नीदरलैंड से। तो ये आप देखिए कितनी

0: इको डिपेंडेंट सिस्टम है। और आपने हाल ही में सुना होगा कि जो एंथ्रोपिक है, ये जो अभी एआई का सिस्टम है यूनाइटेड स्टेट्स का, इन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि उसमें फेबल 5 और माइथो 5 वो किसी भी देश को नहीं दिया जाएगा, सिर्फ उनके 5-6 देश हैं। तो कुछ जो ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं वो हर कंट्री अपने देश में रखता है और वो हर देश को अधिकार है, और लेकिन कुछ चीजें जो ओपन डोमेन में है
1: जी,
0: वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा और उसमें हम एक्सपोर्ट करेंगे। डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जो पहले ही बात होती थी ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स, उनको अभी मिक्स करके 7 DPS यूज कर दिया है। लेकिन जो ये आत्मनिर्भर भारत में सबसे बड़ी चीज आई है कि हमने प्राइवेट इंडस्ट्रीज को भी शामिल कर दिया है
1: जी,
0: और इस डिफेंस प्रोडक्शन में ये जो फिगर आई है 1.78 लाख करोड़ की इस साल, उसमें 24% है प्राइवेट इंडस्ट्री का
1: जी। ट्रिपल पी की हम बात करते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप।
0: तो आप देखिए प्राइवेट इंडस्ट्री, आप याद करिए अमेरिका जैसे है, वहाँ जी है या जितने भी इनके टॉप टॉप कंपनीज हैं सिलिकॉन वाली, वो सब मतलब प्राइवेट प्लेयर्स थे, गवर्नमेंट के तो वहाँ किसी का नाम ही नहीं पता थे। आज इंडिया में भी यही हो रहा है कि जैसे अभी आपने देखा कि एक हैदराबाद में कंपनी है, उन्होंने नाग शस्त्र 150 ड्रोन बनाया है जिसकी रेंज है 1000 किलोमीटर। वो उसकी स्पीड मैक्सिमम है 3 to 3 km/h। मैं ये क्यों कोट कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो नाग शस्त्र हमने जो ड्रोन बनाया 150, ये इंडिया की इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है। और हाँ, दूसरा जो एक और अच्छा सवाल आपने उठाया था और इन्होंने भी बोला था, देखिए जहां तक डिफेंस एक्सपोर्ट्स का सवाल है
1: जी,
0: वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि डिफेंस एक्सपोर्ट्स भी हम उन्हीं चीजों का कर सकते हैं जो हम दे सकते हैं। लेकिन हर चीज को डिफेंस एक्सपोर्ट नहीं करेंगे
1: जी।
0: और आपको पता होगा कि जो इस साल जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं, जो टोटल फिगर्स हैं, वो है मतलब अगर मैं करोड़ में बोलूं तो 38423 करोड़, और ये एक टाइम पे 2000 करोड़ होता था, दैट मीन्स आज से एक डिकेड पहले, तो 19 times गुना बढ़ गया है
1: जी।
0: आपको अभी पता है एआई की अब मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि एआई तो सबसे बड़ी चीज आज की तारीख में आ जाती है, उसमें क्या है कि एक हमारी खुद की ऑटोनोमी होनी चाहिए, मतलब टोटल कंट्रोल होना चाहिए, जिसमें हम सॉवरन एआई होना चाहिए, मतलब जो हमारे सर्वर्स, जो हमारे डाटा सेंटर्स, जो क्लाउड कंप्यूटिंग, सब कुछ वो सॉवरन होना चाहिए। और उस लिहाज से मैं बोलना चाहूंगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कुछ बड़ी अच्छी चीजें की हैं। देखिए मैंने सेमीकंडक्टर से स्टार्ट किया है, आज हमने माइक्रोन जो सिलिकॉन वैली से है, $800 मिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं गुजरात में, और ये सारी जो आपके चिप्स वो है उसमें जो उसकी असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग, पैकेजिंग यहाँ पर होगी, और वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी मैं बोलूंगा क्लीन फैक्ट्री होगी, और सबसे ज़रा आई थिंक वो 5000 square feet का वो इलाका है, इतना वो बड़ा है।
1: यानी जब हम रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण की बात कर रहे हैं तो इसमें प्राइवेट सेक्टर भी है, MSME भी है, साथ ही FDI भी है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात है, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है, जो पॉलिसी प्रधानमंत्री जी ने शुरू की है, उसके थ्रू भी हम कहीं ना कहीं से बढ़ावा दे सकते हैं। आपसे पूछना चाहूंगी डॉक्टर अश्मिंदर, हमने ये देखा कि बहुत सारी आपदाओं के समय भारत ने अपने पड़ोसी देश जो हैं उन्हें राहत सामग्री भेजी, मदद भेजी, और कोविड के समय भी हमने देखा कि हमारी एयरफोर्स ने जो हमारे स्टूडेंट्स फंसे हुए थे अलग अलग देशों में, हमारे नर्सेज थी या और भी इस तरह के हमारे सिटीजन्स थे, उनकी भी मदद की, और हमारे बहुत सारे जो मित्र देश हैं उनके नागरिकों को भी अलग अलग देशों से निकाला। आपसे जानना चाहूंगी जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, अगर हम वायुसेना की बात करें तो एक आत्मनिर्भर देश एक मजबूत देश भी होता है, आप क्या समझते हैं इस नजरिए से, अगर हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करें तो?
2: बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है नीलम जी आपने, इसमें बड़ी सारी चीजें आती हैं।
1: सब
2: एक बात आपने मेंशन की, ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस, यानी कि जैसे नेपाल में 2015 में जो अर्थक्वेक हुआ था, तो भारत ने उस समय बहुत जल्दी से उनकी मदद के लिए जहाजों में रिसोर्सेज और रसायन भेजे थे
1: जी।
2: आपको याद होगा तुर्की में हुआ था, तब भी हमने भेजे। आपको याद होगा भी वेनेजुएला में जो हुआ इतना बड़ा, उसमें भी हमारे C-17 ग्लोब मास्टर जहाज 70 टन का करीब जो है रसायन को लेके गए थे इमीडिएट एड देने के लिए। अभी वहां भूकंप के झटके चल रहे हैं और भारतीय वायुसेना के जहाज लैंड कर रहे हैं, हमारे देश के रसायनों को वहां ले जाके उनकी मदद करे दे रहे हैं जहां हजारों लोग फंसे हुए हैं इस समय। तो कहीं ना कहीं देश का अपना स्टेटस जो होता है वो तभी उभरता है अगर आत्मनिर्भरता हो, तभी उभरता है अगर स्ट्रॉन्ग आर्मी, नेवी और एयरफोर्स हो, तभी उभरता है जब हमने 74% FDI बना दिया आज

0: के अंदर जो आप बात मेंशन कर रहे थे,
1: जी.
0: उससे ये हो गया है कि जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है उसको जैसे अब हम कर रहे हैं, हमने क्या किया है कि साफरान के साथ जो इंजन का हम बना रहे हैं 120 से 140 किलोटन न्यूटन. देखिए, सबसे मुश्किल चीज जो है दुनिया के अंदर एरो इंजन बनाना है. वो बहुत कम देश है दुनिया के जो बना सकते हैं. हमारा भी कावेरी इंजन अब बना है, जिसको हम अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स जैसे घाटक है उसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं. लेकिन जो एक एरो इंजन फाइटर जहाज में, खासकर फिफ्थ जनरेशन या सिक्स जनरेशन जहाज में इस्तेमाल होना है, वो जो टेक्नोलॉजी अभी दुनिया में डेवलप हो रही है, जापान में हो रही है और फ्रांस में हो रही है, वो मिलके भारत बनाएंगे, तो इसमें ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, सोर्स कोड नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि बना हम मिल करके रहे हैं, को डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, जैसे हमने ब्राह्मोस को डेवलप किया, को डेवलप किया. और एक और चीज आ जाती है, जब हम एक साउथ एशिया में या इंडो पैसिफिक में या इंडियन ओशन के रीजन की हम जब बात करते हैं, तो भारत को एक बहुत बड़ा देश का तरफ देखा जाता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पोलिटिको इकोनॉमिक वेट. जो भारत का है वो सभी को मालूम है. हम बात कर रहे थे इससे पहले भी, हम कहते थे कि अफगानिस्तान में कुछ लोग हैं वो, या फिर जो बलूचिस्तान में है वो भारत आना चाहते हैं, उनके लिए पेरिस भारत है और कुछ नहीं है, वो फॉरेन नहीं जाना चाहते. तो कहीं ना कहीं जो ये हमारा इमेज है एज अ स्टेबलाइजर, वासुदेव कुटुंबकम, वैसे मेरे स्कूल का मोटो था ये, तो कहीं ना कहीं ये जो मोटो है कि पूरा वर्ल्ड एक फैमिली है. भारत ने तो कब से बुद्धिज्म के टाइम से ये फॉलो करता आ रहा है, भारत हिंदुइज्म जो वैदिक लिटरेचर है उसके अंदर भी ये चीजें की मेंशन होती है. तो कहीं ना कहीं अगर हमारी एयरफोर्स, आर्मी और नेवी मजबूत रहती है, और हम सहायता यमन में आपने देखा
1: जी,
0: सबसे पहले भारत पहुंचा था पाकिस्तानी सोल्जर्स को. अरे मेरे को आपको एक अच्छी कहानी सुनानी है इसके अंदर, क्योंकि इतनी सारी टेक्निकल बातें हो गई, एक कहानी रह गई
1: जी.
0: ये है 2005 की, कांगो के अंदर यूएन पीस कीपिंग स्टेबलाइजेशन मिशन चल रहा था. वहां पे पाकिस्तानी भी थे, बांग्लादेशी भी थे और भारतीय भी थे. वैसे मैं एक चीज आपको बताऊं, सबसे ज्यादा जो यूएन पीस कीपर्स होते हैं वो इन्हीं तीन देशों से आते हैं. इस समय सबसे ज्यादा 5600 जो है बांग्लादेश से हैं, 5200 से 500 भारत के हैं और 2600 के करीब हैं पाकिस्तान के. उस समय 5 बांग्लादेशी को मार दिया गया, उधर के जो मिलिशिया थी उन्होंने मार दिया था कांगो के अंदर. तो इस इतिहास करके एक जगह थी जहां मारा उनको
1: जी.
0: उस समय पाकिस्तान के सोल्जर्स को भेजा गया था कॉर्डन एंड सर्च करने के लिए गांव के अंदर. वो बेचारे फंस गए, चारों तरफ से गोलियां चल रही थी, तब उन्होंने भारत से मदद मांगी थी. और भारत के जो Mi-25/35 अटैक हेलीकॉप्टर है वो गए, उन्होंने सप्रेशन किया, 50 के करीब मिलिशिया के लोगों को मारा. फिर हमारे Mi-17 गए और उन्हीं पाकिस्तानी सोल्जर्स की कैजुअल इवैक्यूटीज या जिनको वहां से इवैक्यूएट करना था उनको लेके आए ताकि उनको बचा सके. ये है भारत. हम ये नहीं देखते कि हमारा दुश्मन कौन है. मदद में जब भी कोई पुकार करता है, सबसे पहले भारतीय और भारतीय वायुसेना के जहाज वहां लैंड कर रहे होते हैं, भारतीय सेना वहां पे कर रही होती है ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस, और भारतीय नेवी के जो जहाज हैं वो लार्ज स्केल इवैक्यूएशन कर रहे हो.
1: जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई, और यही वजह है शायद कि माननीय प्रधानमंत्री जी हर देशवासी से ये उम्मीद करते हैं कि वो अपनी अपनी भूमिका निभाता रहे. और कहा भी है प्रधानमंत्री जी ने कि हम जो है देश के लिए मरने का मौका सबको नहीं मिलता, लेकिन देश के लिए जीने का जो अवसर मिलता है उसमें हम अपने देश पर गर्व करते हुए जिए. मैं आपसे जानना चाहूंगी कमांडर विक्रमजीत सिंह, भारतीय नौसेना को तो बिल्डर्स नेवी कहा जाता है और बहुत सारी उपलब्धियां जुड़ी हुई हैं. ऐसे में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हम जब इसकी कमर्शियल एक्टिविटीज की बात करते हैं या हम बात करते हैं अपनी मर्चेंट नेवी की, क्या उसमें भी स्वदेशीकरण के कुछ लाभ हो सकते हैं? क्योंकि सीधे तौर पर इसे हम तो बिजनेस से जोड़कर देखते हैं, क्या उसमें भी लाभ होता है स्वदेशीकरण से?
2: बिल्कुल सही नीलम जी. देखिए, हम जैसे मैंने आपको पहले हिस्ट्री बताई थी, तो 60s, 70s और थोड़ा अर्ली 80s तक हम एक बायर्स नेवी थे, जो मैं अभी इंडियन नेवी की बात कर रहा हूँ. और फिर हमारा ट्रांजिशन हुआ टू बिल्डर्स नेवी, जैसे आपने बताया, और इतना पूरा एक तरह से एक इकोसिस्टम क्रिएट हुआ शिप बिल्डिंग को लेके. क्योंकि शिप बिल्डिंग का एक अलग इकोसिस्टम रहता है, एक अलग टाइप के MSME सपोर्ट रहते हैं, एक अलग टाइप का क्लस्टर रहता है. आपने देखा होगा अभी जो हमारे कुछ मैरिटाइम क्लस्टर्स बन रहे हैं, डेफिनेटली कोस्टल स्टेट्स में, महाराष्ट्र में, अगर आप वेस्ट में देखें महाराष्ट्र में, गुजरात में, नीचे आइए आप तो फिर ईस्ट में तमिलनाडु, विशाखापट्टनम, ओडिशा, तो इन स्टेट्स में हमारे क्लस्टर्स बन रहे हैं जहाँ पे इंडिजनाइजेशन और शिप बिल्डिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है. लेकिन जो हमारे

0: जो मेनली अभी हमारी जो वॉरशिप बिल्डिंग हो रही है वो हो रही है हमारे DPSUs में,
1: जी
0: यानी कि डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग शिपयार्ड्स में, और एक ऑफ कोर्स हमारा PSU शिपयार्ड जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहा है केरला में। तो 4 DPSU हैं, 1 PSU है। तो ये अपना एक अलग इकोसिस्टम बना के चल रहे हैं। इस इकोसिस्टम को और इसका महत्व समझते हुए हमारी गवर्नमेंट ने और प्रधानमंत्री जी ने जो एक क्लैरियन कॉल दिया था कि कमर्शियल शिपिंग में भी
1: जी
0: अब हमारा आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। आपको डेफिनेटली याद होगा कि उन्होंने दो एक MIV दिया, एक विजन दिया है 2030 के लिए, यानी कि
1: जी
0: 2030 तक इंडिया को कमर्शियल शिपिंग में कहाँ पहुंचना है दुनिया में। आज हम बिल्कुल ही जिसको कहते हैं ऑलमोस्ट निग्लिजिबल हमारी प्रेजेंस है। 2030 तक हम चाह रहे थे कि हम टॉप 10 नेशंस में आ जाएं।
1: जी
0: तो ये उन्होंने एक लक्ष्य दिया था जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज जिसको जो स्टीयर कर रही है, और 2047 जो हमारा अमृतकाल विजन दिया था उन्होंने 100 साल हमारे इंडिपेंडेंस के, कि हम
1: जी
0: टॉप 5 नेशंस में आ जाए। तो ये कहना बहुत ही सरल है और करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन सारी एजेंसीज को इस तरह से मोटिवेट किया और इस तरह से चैनलाइज किया, कोऑर्डिनेट किया कि हम उस तरफ अभी हमें वो होता हुआ धीरे धीरे नजर आ रहा है।
1: जी
0: तो इसके लिए सरकार ने बहुत सारे प्रोत्साहन भी दिए हैं, उन्होंने बहुत सारी स्कीम्स दी हैं, फाइनेंशियल एड्स दिए हैं जो कि आपको अगर आप शिप बिल्डिंग इंडिया में करवाते हैं तो आपको कुछ डायरेक्ट एड्स मिलती हैं, डायरेक्ट कॉम्पेंसेशन मिलता है, और जो शिपयार्ड हैं जिनको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, चाहे वो ब्राउन फील्ड हो ग्रीन फील्ड हो, उनके लिए भी अलग जिसको मैरिटाइम डेवलपमेंट फंड है, तो काफी पैसा सरकार ने ईयर मार्क किया और इसके ऊपर भी बहुत सारा थ्रस्ट है।
1: जी
0: किसी भी शिप बिल्डिंग एक्टिविटी में कई ऐसी चीजें होती हैं जो आप क्रॉस यूटिलाइज कर सकते हैं। एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे इंटरनेट था वो बेसिकली पहले US मिलिट्री के यूज के लिए बनाया गया, और उसके बाद वो इंटरनेट अब देखिए अब किस स्तर पे पहुंच गया जब उसको पब्लिक के लिए ओपन किया गया और कहां वो पहुंच गया। सेम चीज मोबाइल के साथ हुई। तो इसी तरह से जब ये कमर्शियल शिप बिल्डिंग और नेवल शिप बिल्डिंग वॉरशिप्स बिल्डिंग है, इसमें जब समन्वय होगा, थोड़ी कोऑर्डिनेशन होगी, तो कई इक्विपमेंट ऐसे हैं जो कि हमारे क्रॉस यूटिलाइज हो जाएंगे और हमारी कॉस्ट ऑफ शिप बिल्डिंग जो है वो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो जाएगी। तो वो एक क्लैरियन कॉल दिया है अभी प्राइम मिनिस्टर ने और भारत सरकार ने, और आपने देखा होगा अभी रिसेंटली जो ईरान कॉन्फ्लिक्ट में जो कि हमारे जो मर्चेंट मरीनर्स थे जो चुपचाप अपना काम करते रहते थे,
1: जी
0: महीनों महीनों घर से दूर रहते थे, किस कंडीशंस में उन्होंने शिप्स को लेके जाते इतनी हाई सीज रफ सीज, तो उनको कोई मतलब सब भूल गए थे जब तक कि ये हुआ। ये एक बात है, आज की डेट में करीब इंडिया में करीब 0.1% ग्लोबली शिपिंग हमारी इंडिया की है, इंडियन ओन्ड। तो इसको अब हमने बोला था टॉप 5 और टॉप 10 में लेके जाने के लिए, मतलब बहुत ही ये कठिन कार्य है, लेकिन ये तभी संभव है जबकि हम सारी शिप्स ओन करने लग पड़े,
1: जी
0: और सारी ये जो पॉलिसीज हैं, ये इंसेंटिव्स हैं, ये इसी की तरफ हैं कि इंडियन बिल्ट, इंडियन फ्लैग्ड एंड इंडियन ओन्ड वेसल्स को बढ़ाने के लिए। इसका भी एक टारगेट दिया हुआ है कि इतने मिलियन टन्स जो है वो हमारी मतलब शिपिंग हमारी हो जानी चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया
1: जी
0: 2030 तक और 2047 तक। एंड जो हमारे मेन इक्विपमेंट होते हैं नीलम जी, मैं ये लास्ट चीज कहना चाहूंगा, जैसे इंजन, तो इंजन जो हवाई जहाज के भी बहुत ही स्पेशलाइज इक्विपमेंट है, सिमिलरली जो इंजन जहाज के होते हैं वो भी स्पेशलाइज इक्विपमेंट होता है। ऐसा नहीं है कि आप सारी चीजों को इंडिजनाइज कर पाए क्योंकि उसका
1: जी
0: आपको कॉस्ट बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपके पास उतने नंबर्स नहीं है। तो दुनिया में कई लोग ही हैं जो बनाते हैं, किंतु अगर हम ये चीजें कमर्शियल शिप में भी लगती हैं और कई ऐसी चीजें वॉरशिप्स में भी लगती हैं, तो ऐसे इक्विपमेंट हमें लेके मान के चलना पड़ेगा कि ये तो कई चीजें हमें बाहर से मंगानी पड़ेंगी। इसमें एक ही एडवांटेज है, जब आप बाहर के जो OEMs हैं आप इंडिया में उनको ला सकें, जो कि अभी हम बोल रहे हैं कि आप यहां आके बनाइए
1: जी
0: मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, तो उससे जो हम बोलते हैं स्पिन ऑफ इफेक्ट्स, यानी कि जो मल्टीप्लायर इफेक्ट्स इकोनॉमी को लेके, एम्प्लॉयमेंट को लेके, उसका फायदा हमें हो सकता है।
1: जी बहुत अच्छा आपने बताया। और जैसा कि आपने कहा कि मरीनर्स आराम से काम करते रहते थे शांति से, ज्यादा लोगों को उसके बारे में पता भी नहीं था, इसी तरह से हमारी पनडुब्बियां भी कितने कितने महीने पानी के अंदर ही काम कर रही हैं लगातार, लेकिन इन्हीं प्रयासों से हम सुरक्षित भी हैं। और हिंद महासागर में भारत की जो बढ़ती उपस्थिति है और दमदार होती उपस्थिति जो है वो भी हमारी नौसेना के बलबूते ही है। सर मैं आपसे अब आपकी पसंद का कोई गाना जानना चाहूंगी जो आप श्रोताओं को सुनवाएंगे।
2: फौजी में इमोशंस बहुत होते हैं,
1: जी
2: तो गाना है संदेशे आते हैं, और
1: जी
2: इसका कारण यह है, ये बॉर्डर पिक्चर का है, और मेरे दोनों छोटे जो बेटे थे उस समय
1: जी
2: वो स्कूल में थे, लेकिन ये मूवी देख के उनको बहुत मोटिवेशन हुआ और आज वो भारतीय सेना में दोनों ऑफिसर हैं।
1: बहुत अच्छी ये बात आपने हमें बताई, हमारे श्रोता जरूर प्रेरित होंगे इस बात को सुनकर, और ये प्यारा सा गाना हम सुनवा रहे हैं अपनी ऑडियंस को।

0: तो जोश जगाते इस गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। हमारे तीन विशेषज्ञ इस समय स्टूडियो में हमारे साथ हैं। हम बात कर रहे हैं रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की, स्वदेशीकरण की हम बात कर रहे हैं, और अपने विशेषज्ञों के बहाने आज हम अपनी सेनाओं को और नजदीक से जान रहे हैं। जो हमारे मन में आदर भाव है, सम्मान है, वो और बढ़ता जा रहा है ये जानकर कि किस तरह से हमारी सेनाएं लगातार देश की सेवा में लगी रहती हैं और किस तरह से हम जिसे अपना विकास कहते हैं उसमें मील का पत्थर होते हैं हमारे फौजी, हमारी सेनाएं। सर, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी संजय मेस्टन जी, जब हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं तो मेक इन इंडिया को अगर बढ़ावा मिलेगा, जिसमें कि हम अपने त्योहारों में इस्तेमाल होने वाले दिए और मोमबत्ती से लेकर अब हम अपने फाइटर जेट्स तक की बात कर रहे हैं मेक इन इंडिया की, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये कहीं हमारे शिक्षा जो है उसे भी प्रभावित करेगा, हमारे शिक्षा के क्षेत्र में भी थोड़ा विस्तार होगा इस बहाने?
1: बिल्कुल, शिक्षा में तो बहुत विस्तार होगा। देखिए, पहली बात, ये जो भी मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट चल रहा है हर चीज में, ओवरऑल नेशन बिल्डिंग में
0: जी,
1: हर भारतीय को फख्र होगा कि मैं भारत देश को बिलोंग करता हूं। और आज मैं आपको बताना चाहूंगा, हम चार लोग यहां बैठे हैं और हम चारों बाहर जा रहे हैं, कई देशों में जाते हैं, हमें बहुत फख्र होता है कि सब बोलते हैं आप इंडिया के हैं। तो इंडिया का जो आज एक ग्लोबल रीच बढ़ गई है
0: जी,
1: जो उसके भी कई कारण है। देखिये, सबसे बड़ा कारण है, तीन फैक्टर्स है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, लीडरशिप, इकोनॉमिक ताकत और मिलिट्री ताकत। ये तीन चीजें कॉम्बिनेशन है, ये देश की एक नेशनल पावर को डिफाइन करता है
0: जी।
1: जब ये सब पावर मिलती है एक देश को, अपने आप दिखती है। और आपने देखा है G20 समिट में जिस प्रकार भारत ने लीडरशिप लेके अफ्रीकन यूनियन को शामिल

0: करवाया, वो एक
1: जी
0: मास्टर स्ट्रोक था। उसी G20 समिट में आईमेक कॉरिडोर जो हमने अनाउंस करवाया, जिसमें प्रेसिडेंट बाइडेन थे और जिसमें आप देखिए मल्टीलेटरल कंट्रीज हैं, यूरोप, इसराइल, पूरा गल्फ कंट्रीज और भारत। तो आप ये देखिए कि ये मास्टर स्ट्रोक्स हैं। अब जब ये सब होता है तो भारत का जब एक आइडेंटिटी पूरे विश्व में बढ़ती है और आज सारा विश्व भारत की तरफ देख रहा है, एक राइजिंग पावर है। मैं तो बोलूंगा जो ग्लोबल साउथ के हम कैपिटल हैं इंडिया,
1: जी
0: अगर ये हो रहा है तो जाहिर है कि एडुकेशन का विस्तार बहुत होगा, उस
1: जी
0: पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। एक कर्तव्य, एक प्राइड कि मैं भारतीय हूँ। कुछ साल पहले हमारे कई बच्चे बाहर जाना चाहते थे, अब वो चेंज हो रहा है क्योंकि जब एक सेल्फ रिलायंट इंडिया है, आज हमारी रोड्स देखिए फर्क पड़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में फर्क पड़ा है, और आज की तारीख में टेक्नोक्रेट्स को ज्यादा वजूद दिया जा रहा है हमारे
1: जी
0: सिस्टम में। अगर वो दिया जा रहा है तो ऑब्वियसली जो यंगस्टर्स हैं, और जो प्राइवेटाइजेशन शुरू कर दिया हमने,
1: जी
0: तो यंगस्टर्स आज उनको समझ में आ रहा है। आपका स्टार्टिंग पॉइंट था ये प्रोग्राम में कि लोगों को पता होना चाहिए भारतीय सेना क्या है,
1: जी
0: और अब कैसे पता चल रहा है, भारतीय सेना जब ये सारी प्राइवेटाइज हो गई है ये आत्मनिर्भर भारत में, तो कितनी सारी MSMEs आ चुकी हैं, उसमें काम करने वाले कौन है, यूथ, हाईली टैलेंटेड यूथ,
1: जी
0: AI एक्सपर्ट्स, सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स, उनको एक्सपोजर मिल रहा है। तो वो जब देखेंगे तो फिर वे बाहर क्यों जाएंगे, और जब इंडिया में हम इतना प्रोड्यूस करते जा रहे हैं, चाहे AI हो, चाहे मिसाइल्स हो, चाहे ड्रोन्स हो, चाहे सब कुछ हो, चाहे एयरक्राफ्ट इंजन हो, सब कुछ अगर हम जब इंडिया में कर रहे हैं, तो जहां पर जॉब्स हैं और जहां पर अपॉर्चुनिटीज हैं और
1: जी
0: जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है और जहां सैलरीज अच्छी हैं, तो ऑब्वियसली लोग को फिर और बढ़ावा मिलेगा एडुकेशन की तरफ ध्यान देने को। जो हमारा पहले ब्रेन ड्रेन होता था ना,
1: जी
0: बाहर जाते थे,
1: जी
0: अब मेरे को लग रहा है अगले 10 साल के अंदर या 2047 तक मैं बोलूंगा, इंडियंस विल रिमेन इन इंडिया, और आप देखिएगा हमारा विस्तार बहुत होगा, तो एडुकेशन से इस पे प्रभाव पड़ेगा।
1: यानी जब हम स्वदेशीकरण की बात करते हैं तो ऐसा दिखता है कि सेनाएं मजबूत हो रही हैं, लेकिन इससे अपने आप रोजगार भी मिल रहा है लोगों को और शिक्षा के क्षेत्र का भी विस्तार हो रहा है। और जैसा कि हमें बताया डॉक्टर अश्मिंदर ने कि जब सुरक्षित देश है तो मजबूत देश भी है, जरूरत पड़ने पर हम अपने जो पड़ोसी देश है उनकी मदद भी कर सकते हैं। ऐसे में मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगी, आप अपने अनुभव से बताएं, आपने इतने सारे देशों में देखा है, उनको काम करते हुए देखा है, कई यात्राएं आपने इस दौरान की हैं। जो भारतीय सेना है बेहद सम्मान के साथ देखा जाता है भारतीय सेना को, और हमारे बहुत सारे इस तरह की एक्सरसाइज होती हैं जिसमें अन्य देशों की सेनाएं सब मिलकर काम करते हैं, वो एक्सरसाइज में भाग लेते हैं। ऐसे में भारतीय सेना जो है उसकी स्थिति दुनिया में क्या मानी जाती है, और जो अगर मजबूती है तो क्यों मानी जाती है वो?
0: मैं बहुत घमंड के साथ बोल सकता हूँ नीलम, भारतीय सेना की जो छवि है वो विश्व में नंबर वन है।
1: जी
0: मैं कई कंट्रीज में गया हूँ, 23 कंट्रीज ऑफिशियली गया था ऑन ड्यूटी।
1: जी
0: टॉप कंट्रीज हैं, अमेरिका है, इसराइल है, टर्की है, जापान है, फ्रांस है, मलेशिया है, मतलब चाइना है। चाइना में मैं खुद एज अ इंडियन डेलीगेशन लीडर गया था, जो चाइना में फर्स्ट SCO पीस कीपिंग एक्सरसाइज हुई थी 2005 में, मैं उसको विटनेस करने गया था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह सारा तजुर्बा देखते हुए और हर कंट्रीज में, आज विश्व की सारी सेनाएं चाहती हैं कि भारत के साथ बाइलेटरल, मल्टीलेटरल, ट्राइलेटरल एक्सरसाइजेस करना चाहती हैं, क्योंकि जो हमारी एक एक्सपीरियंस है काउंटर इंसर्जेंसी में डील करने की,
1: जी
0: काउंटर इन्फिल्ट्रेशन में डील करने के लिए, टेररिज्म को डील करने के लिए, ह्यूमैनिटेरियन एड वगैरह देने में, रिस्पांस सिस्टम में, हमारी जो लॉजिस्टिक सप्लाई चेन है, जो एक एक्सपर्टीज है। और भारतीय सेना एक वो सेना है जो ऐसी जगह डिप्लॉयड है, सियाचिन ग्लेशियर से लेके नागालैंड तक, से लेके डेजर्ट तक, और नेवी के साथ भी हमने इतनी फंक्शनिंग करते हैं, एयरफोर्स के साथ भी। तो कहने का मतलब है जो हमारी काबिलियत है, हमारी कैपेबिलिटीज है, वो कैपेबिलिटीज को देख के पूरा विश्व, मैं बोल सकता हूँ वी आर नंबर वन, पूरा विश्व आज चाहता है कि भारत सेना के साथ ट्रेनिंग करें। और मैं क्योंकि अफगानिस्तान में था तकरीबन 3 साल, वहाँ 53 कंट्रीज मैंने देखी थी अमेरिका द्वारा लेड किए हुए। मेरे को वो हर मीटिंग में बुलाते थे, चाहे वो नेटो सेक्रेटरी जनरल आता था, चाहे इनके आर्मी चीफ आते थे हर कंट्री के साथ। तो मेरे को तब इतना फख्र होता था कि इंडियन व्यू पॉइंट वो सुनना चाहते हैं, और इंडिया की जो छवि है इंडियन आर्म फोर्सेस की
1: जी
0: बहुत ही सॉलिड है। और एक और चीज मैं इसमें बोल रहा हूँ, रेजिमेंटेशन, जितने फॉरेन चीफ्स आते थे इंडिया में वो बताऊं क्या बोलते थे, आपकी जो एक रेजिमेंटेशन स्पिरिट है
1: जी,
0: आज अगर मैं जाट रेजिमेंट का हूँ तो मेरे जो जाट रेजिमेंट वाले वो जवान है वो बिल्कुल मतलब अपनी रेजिमेंट के नाम पे मर जाए।

0: मैं
1: जी
0: वैसे महा रेजिमेंट का हूँ,
1: जी
0: तो महा रेजिमेंट वाले जो मेरे जवान हैं उनका एक अलग जज्बा होगा, डोगरा का अलग होगा, मराठा का अलग होगा।
1: जी
0: तो ये रेजिमेंटेशन है ये सिर्फ इंडियन आर्मी में है, ये यूनिकनेस है। मैंने अमेरिकन फॉरेन चीफ जो यहाँ पर आए थे आर्मी चीफ, उनसे खुद सुना था कि दिस इज द मोस्ट यूनिक थिंग अबाउट द इंडियन आर्मी। तो
1: जी
0: ये हमारी जो कामरेडरी है, भाईचारा है, आपसी संबंध है, जवान और ऑफिसर के जो रिश्ते हैं, तो
1: जी
0: ये सारी चीजें ये विश्व वाले देखते हैं, इंक्लूडिंग चीनी, ये भी चाहते हैं हमारे साथ एक्सरसाइज करने के लिए, और हमने किए हैं चीन के साथ भी, एससीओ के साथ
1: जी
0: एक्सरसाइज। तो मैं घमंड के साथ बोल सकता हूँ, मेरे को इस पे कोई वो नहीं है, एज अ फौजी वी आर नंबर वन एंड
1: जी
0: मोस्ट रिस्पेक्टेड आर्म फोर्सेस,
1: जी
0: नॉट आर्मी, आर्म फोर्सेस इंक्लूडिंग नेवी, इंक्लूडिंग एयरफोर्स। नेवी के साथ जो वाइजैग में शायद आपने भी कवरेज किया था उस एक्सरसाइज
1: जी
0: को,
1: इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू।
0: उसमें ईरानियन शिप भी थी और
1: यूएस
0: यूनाइटेड स्टेट्स की शिप भी
1: जी
0: थी।
1: ऐसे में बताएं, बहुत रोचक बात आप बता रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि नो फर्स्ट यूज हमारी पॉलिसी रही है, तो जब हम अपने डिफेंस बजट को बढ़ाते हैं तो कुछ लोग क्रिटिसिज्म भी करते हैं और कुछ हमारे पड़ोसी देश हैं जो थोड़े नाराज भी हो जाते हैं और बार बार ये बात लेकर आते हैं कि डिफेंस बजट क्यों बढ़ाया जा रहा है, और अब तो हम स्वदेशीकरण की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भरता की, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे?
0: मेरे ख्याल डिफेंस बजट तो और बढ़ना चाहिए,
1: जी
0: क्योंकि देखिए सिक्योरिटी जो इकोनॉमिक्स है, और देखिए अगर डिफेंस सॉलिड है तो इकोनॉमिक आपकी सॉलिड बढ़ेगी,
1: जी
0: ये बहुत कोरिलेटेड है। और चीन एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, 2050 का उसका विजन था कि हम कोई लड़ाई वड़ाई में के पंगे नहीं फंसेंगे, हम मिलिट्री कंसोलिडेशन, इकोनॉमिक कंसोलिडेशन। आज भारत भी वही कर रहा है, क्योंकि मेरा तो इसमें विचार है डिफेंस बजट और बढ़ना चाहिए, गवर्नमेंट दे रही है, और कैपिटल एक्विजिशन पे भी हमें थोड़ा ज्यादा जोर देना चाहिए, क्योंकि खासकर एयरफोर्स और नेवी के लिए ये जरूरी है। कैपिटल एक्विजिशन मतलब ये नहीं कि हमने बाहर से खरीदना है, उसको
1: जी
0: हम इंडिजनाइज भी कर सकते हैं।
1: तो डॉक्टर अश्विंदर, आपसे मैं जानना चाहूंगी, जैसे दूसरे देशों से सीखने की बात करें तो जापान में तो SDF अभी तक रहे, सेल्फ डिफेंस फोर्सेस रही, सिर्फ आत्मरक्षक बल थे। कहते हैं कि हमें कहीं आक्रमण नहीं करना, तो सेनाओं की हम क्या जरूरत है उतना बजट देने की। आपसे जानना चाहूंगी मैं कि ये जो पॉलिसी होती है कि हमें क्योंकि लड़ाई नहीं लड़नी है इसलिए हम सेनाओं को मजबूत नहीं रखेंगे, आप इस बारे में क्या कहेंगे?
2: देखिए डिटरेंस का मतलब ही ये होता है कि आपकी आर्म फोर्सेस इतनी स्ट्रांग है कि कोई भी देश विश्व का सोच नहीं सकता आपके ऊपर हमला करना। अगर हम एक ऐसी सिक्योरिटी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं
1: जी
2: जिसमें पूरी इकोनॉमी फ्लावर करती है हमारे देश की, तो वो सिक्योरिटी एनवायरनमेंट देती है हमारी आर्म फोर्सेस, तीनों आर्म फोर्सेस, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। हम कह रहे थे ना कि हम दूसरों से क्या सीखते हैं।
1: जी
2: अभी आपने सेल्फ डिफेंस फोर्सेस की बात करी, आपको पता है कि उनका डिफेंस बजट मल्टीफोल्ड हो गया जापान का। अब उन्होंने रियलाइज कर लिया है कि
1: जी
2: उनको अमेरिका की अम्ब्रेला नहीं मिलने वाली, और वो अपनी जो उनकी इंजिन्स की कैपेबिलिटी है, जो उनके जहाजों को बनाने की कैपेबिलिटी है, आपको ये भी मालूम होगा कि 6th जनरेशन ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम में इटली और यूके के साथ मिलकर अहम रोल प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर शिप्स में देखें, वो कमांडर साहब ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, लेकिन उसमें भी और जो इंजन्स है उसके अंदर तो उन्होंने बहुत अच्छी माहिरता प्राप्त कर ली है। दूसरी चीज आ जाती है, अगर हम अपना एनवायरमेंट देखें आसपास का, हम लोग प्रेडेटरी नहीं है, हमें दूसरों की टेरिटरी नहीं चाहिए, हमें दूसरों की जमीन नहीं चाहिए, लेकिन अपने आप को और आसपास के एरिया को अगर प्रोटेक्ट करना है, इंडियन ओशन को प्रोटेक्ट करना है, तो बहुत जरूरी है कि हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स बहुत स्ट्रांग हो। अभी भी हमारी आर्मी 50,000 से ऊपर 3,488 किलोमीटर बॉर्डर पे डिप्लॉयड है, लद्दाख में है, दूसरी जगहों पे है, अरुणाचल प्रदेश, कितनी मुश्किल कंडीशंस में वो पूरे पूरे साल रहते हैं, जहां पे टेम्परेचर -20 -30 तक पहुंच जाते हैं, और फिर जब गर्मी आती है तो फिर कहां, आपको पता है रेत में कहां पे इनके टेम्परेचर 50 डिग्री से ऊपर। तो उसी तरीके से हमारी तीनों सेनाएं जो डिप्लॉयड है हर जगह, ये इसलिए डिप्लॉयड है ताकि दूसरा आंख उठाकर भी हमारी धरती पे ना देख सके। और अब आप देखिए यूक्रेन का हाल, उनकी सेनाएं उतनी स्ट्रांग नहीं थी, उनकी इतनी बर्बादी हो चुकी है ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी आर्म फोर्सेस स्ट्रांग होगी तब आप हर लड़ाई जीत लोगे, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि आपने अमेरिका के साथ देखा, उन्होंने उसके भी तोड़ देख लिए, वो सरवाइव कर रहे हैं अटैक्स के अंदर उन सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हुए जिससे कॉस्ट इफेक्टिव रहे, चाहे वो ड्रोन्स हैं, मिसाइल्स हैं, या उनका ज्योग्राफिकल जो उनका पूरा का पूरा टेरिटरी है डिफेंस की ओरिएंटेड की तरफ, ओरिएंटेशन की तरफ। तो कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी होता है कि हमें तो नहीं किसी की टेरिटरी चाहिए, हमने कई बार बहुत क्लियरली किया, हाँ हमें सिर्फ अपना जो जेन्युइन

पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो वापस चाहिए, आज नहीं तो वो खुद अपने आप, हमने तो कोई लड़ाई नहीं की अभी, हम तो अपने भेज नहीं रहे लोगों को, इसका मतलब है हमारी ऑफेंसिव इंटेंशन नहीं है। लेकिन डिफेंसिव होने के लिए भी आपकी क्षमता इतनी स्ट्रांग हो कि दूसरा देश 10 बार सोचे कि वो आप पे हमला करे कि नहीं करे। एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूं अगर आप परमिट करें, एक चीज कहते हैं हम सिविल मिलिट्री फ्यूजन, हम जो सीख सकते हैं दूसरों से, तो हम चीन से ये चीज सीख सकते हैं। उन्होंने क्या किया, आप बात कर रहे थे ना एजुकेशन की, तो उनका एक है 7 Sons of National Defense, जैसे बेजिंग की यूनिवर्सिटी या बेजिंग की इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गई या दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशंस या यूनिवर्सिटीज हैं जो बेजिंग के अंदर, कुछ ऐसी हैं जिनको वो फंड भी करते हैं ताकि क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के ऊपर वो फोकस कर सकें। तो ये चीज हमने शुरू कर दी है। अब ये जो बुलेट प्रूफ वेस्ट्स हैं जो आर्मी यूज करती है हाई ऑल्टीट्यूड्स में, उसमें कहीं ना कहीं रोल रिसर्च

0: चाहता हूँ अगर आप परमिट करें। एक चीज कहते हैं हम सिविल मिलिट्री फ्यूजन, हम जो सीख सकते हैं दूसरों से, तो हम चीन से ये चीज सीख सकते हैं। उन्होंने क्या किया, आप बात कर रहे थे ना एजुकेशन की, तो उनका एक है सेवन सन्स ऑफ नेशनल डिफेंस। जैसे बीजिंग की यूनिवर्सिटी या बीजिंग की इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गई, या दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशंस या यूनिवर्सिटीज हैं जो बीजिंग के अंदर, कुछ ऐसी हैं जिनको वो फंड भी करते हैं ताकि क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के ऊपर वो फोकस कर सकें। तो ये चीज हमने शुरू कर दी है। अब ये जो बुलेट प्रूफ वेस्ट हैं जो आर्मी यूज करती है हाई ऑल्टीट्यूड्स में, उसमें कहीं ना कहीं रोल रिसर्च का यूनिवर्सिटीज का भी रहा है। और ये इनोवेशन सेल्स जो बन रहे हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर, लेकिन जिस संख्या में अगर हम इसको थोड़ा और तेज गति लेके आए, एक सिविल मिलिट्री फ्यूजन हो, तो हमारा देश और भी स्ट्रांग बनेगा।
1: जी, यही कामना सभी की। और मैं कमांडर विक्रमजीत सिंह, चलते चलते क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका मैं जानना चाहूंगी।
2: बिल्कुल सही, अगर आप एक स्ट्रांग मिलिट्री पावर नहीं है तो ऑब्वियसली आपका अस्तित्व हमेशा खतरे में है। ये अभी बहुत क्लियरली विश्व में वापस लोगों को समझ में आने लगा है, जो वर्ल्ड वॉर टू के बाद और कोल्ड वॉर के बाद बिल्कुल जिन्होंने बोला था नहीं हमें नहीं लड़ाई लड़नी, हमें नहीं करना, हमें न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं चाहिए
1: जी।
2: अब आपने देखा सब लोग धीरे धीरे यू टर्न मार रहे हैं। जापान सबसे पहले उन्होंने अपनी एक नई फ्रिगेट लॉन्च कर दी है कि भाई ये प्रोग्राम हम लॉन्च कर रहे हैं
1: जी।
2: फ्रांस बोल रहा है मैं न्यूक्लियर वेपन अपना फिर से प्रोग्राम शुरू कर दूंगा। तो जैसे जैसे जियोपॉलिटिक्स चेंज होता जा रहा है, लोगों ने अपने अपने जो उनके डिसीजंस हैं विद रिस्पेक्ट टू सोवरेनिटी एंड डिफेंस ऑफ द नेशन, तो वो उन्होंने बदले हैं बिल्कुल इसमें। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम बात करते आ रहे हैं अभी तक, कि जब तक आपका स्ट्रांग मैन्युफैक्चरिंग सेटअप नहीं होगा नीलम जी, आप एक स्ट्रांग मिलिट्री भी नहीं बन सकते हैं। क्योंकि आत्मनिर्भरता का मतलब है आपका खुद का स्ट्रांग मैन्युफैक्चरिंग सेटअप होना
1: जी।
2: आज तक इंडिया ने पूरे विश्व में अपना झंडा गाड़ा था सॉफ्ट सर्विसेज में, यानी कि सर्विसेज में, सॉफ्टवेयर में हम नंबर वन है, चिप डिजाइन में आप देखें अमेरिका में तो इंडियंस हैं उसमें
1: जी।
2: और एआई में भी ऑब्वियसली फिर इंडियंस हैं, बहुत आगे आगे हैं और बहुत वेल पेड है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में कहीं ना कहीं जो हम थोड़ा पिछड़ गए थे, जिसकी इम्पोर्टेंस देश ने समझी है और इसके ऊपर भी एक प्रधानमंत्री जी ने अलग से क्लैरियन कॉल दिया है कि हम अपने ब्लू कॉलर वर्कफोर्स को कैसे और स्ट्रेंथन करें, हमारे मैन्युफैक्चरिंग कैसे स्ट्रेंथन हो, ये सारे कॉरिडोर्स वगैरह उसी की ओर एक कदम थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये भी हो जाता है तो हम वाकई कह पाएंगे जी हाँ हम सेल्फ रिलायंट हैं, आत्मनिर्भर हैं। क्योंकि पीछे अगर आपको याद हो हमने देखा था कि कई ऐसी कंट्रीज हैं कि पहले बात हो रही थी कोविड के बाद ये बात शुरू हो गई थी कि चाइना को आप सप्लाई चेन से हटा दीजिए, फिर आपने देखा होगा कि वो चाइना प्लस वन पॉलिसी आ गई वर्ल्ड में। चाइना को हटाना इतना आसान नहीं है क्योंकि वो हर एक के मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन में है। तो प्लस वन, तो प्लस वन में आज की डेट में अगर आप विश्व में देखें स्टेबिलिटी वाइज, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वाइज, इंडिया इज द लीडिंग कंटेंडर। तो उससे क्या फायदा होगा, विश्व का भी फायदा है और भारत का भी फायदा है। आत्मनिर्भरता, मेक इन इंडिया फॉर इंडिया एंड मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड।
1: फॉर द वर्ल्ड, बहुत अच्छी बात आपने बोली। और हम ट्रेड बास्केट की बात जो कर रहे थे कि हमारे आत्मनिर्भर होने से उसमें भी संतुलन बना रहेगा, तो ये है भारत समुद्र से आकाश तक सुरक्षित भी आत्मनिर्भर भी। और जिनकी वजह से सुरक्षित है उनके लिए ये दो पंक्तियाँ, देश की मिट्टी माथे से लगा लेता हूँ मैं हर त्योहार कुछ इस तरह मना लेता हूँ। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आज हमने बात की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की, स्वदेशीकरण की। और हमारे विशेषज्ञ इसके लिए थे कार्यक्रम में मेजर जनरल संजय मेस्टन, भारतीय थल सेना से आप हमारे बीच आए, हमारा मार्गदर्शन किया, बहुत रोचक जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। हमारे साथ रहे एयर कमोडोर डॉक्टर अश्मिंदर सिंह बहल, वायुसेना से आपने बहुत रोचक बातें हमें बताई। कमांडर विक्रमजीत सिंह नौसेना से आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों विशेषज्ञों का। और मैं यही कहना चाहूंगी अपने श्रोताओं से कि INS विक्रांत हो, तेजस हो, प्रचंड हो, अर्जुन टैंक हो, पिनाका रॉकेट या ब्रह्मोस, ये सिर्फ नाम नहीं, ये भारत का गर्व है। और इस गर्व को और बढ़ाने की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात करके। आज पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में हमारे तीनों विशेषज्ञों ने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के संयोजक थे प्रमोद कुमार वत्स और कार्यक्रम प्रोड्यूसर शाहनवाज खान और तुषार पराशर के साथ मैं नीलम मलकानिया इस कार्यक्रम से अब आप सभी से लेती हूं अनुमति। नमस्कार, जय हिंद।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स।

किसी ने बहुत सच कहा है, तन्हाई में मुस्कुरा देना भी इश्क है, तन्हाई में मुस्कुरा देना भी इश्क है, और इस बात को सबसे छुपा लेना भी इश्क है। सच्ची जी कदी कदी ना दुनिया दी रीतां तों, दुनिया दी उन्हां चीज़ां तों हट के जेकर तुहानूं किसे ना प्यार हो जावे, मुहब्बत हो जावे, तो तुसीं उहनूं खुल के इजहार नहीं कर सकते। और वाकई किसी वल देख के मुस्कुरा देना भी एक तरफा मुहब्बत होंदी है, तो कई बार कुछ रिश्तियां नूं दुनिया तों अपनियां तों लुका के रख लेना वह भी मुहब्बत है। और यही मुहब्बत और प्यार और दोस्ती और वफा दी रीत है। बस अपनी अखियां अपने दिल दे नाल इसनूं इन्हां जज्बातां नूं कई बार समझा लेना वह भी इश्क हुंदा है।

किसी ने क्या खूब कहा है, एक दूसरे को समझना भी पड़ता है। ए दोस्त, एक दूसरे को समझना भी पड़ता है, सिर्फ हाथ पकड़ लेने से मोहब्बत नहीं हो जाती। 102.7

किसी ने ना मुझसे कहा कि तुम बहुत अच्छी हो। मैंने भी उसे कहा कि बस यही तो खराबी है। कदी कदी ना तुहाडा चंगा होना, सच्चा होना ते अच्छा होना तुहाडे लई फायदेमंद भी हुंदा है ते कदी कदी तुहाडे लई जिहड़ा है तुहानूं नुकसान भी कर सकदा है। इस करके चंगे बणो, अच्छे बणो, पर तुहाडा कोई फायदा ना चुक सके, इन्ने क तुसीं समझदार भी हो सको। 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से प्रोग्राम चल रहा है जी मेरे मैलरीज एंड स्टूडियो की कड़ी ते 1:40 जड़े ने हो चले ने। ते इस प्रोग्राम तो बाद मतलब हुण जड़ा समा है जी वो है पंजाबी खबरां दा साडे प्रदेशित चैनल तो। कुछ पलों बाद तुसी सुनोगे जी पंजाबी दे विच खबरां ते उस तो बाद 1:50 ते फिर तो कंटिन्यू करांगे अपना प्रोग्राम मिड डे मैलडीज। ते हुण समा है ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ।

शिकवे भी तुमसे हैं, कबूल भी तुम हो। शिकवे भी तुमसे हैं, कबूल भी तुम हो। तेरे हर भाव है, मेरा हर भाव है तुमको समर्पित। हृदय का शोर भी तुमसे और सुकून भी तुम हो। प्रोग्राम तुसीं इंजॉय कर रही हो दिलाज शायर अपनी दोस्त ते होस्ट शाहजरिया दे नाल। ते जिहड़े दोस्त इंजॉय कर रहे ने नाल दे नाल अपनी लिखियां होईयां शेरो शायरियां साडे नाल सांझियां वी कर रहे ने। बलविंदर सराम पिंड मोड़ जन सिखा हनुमागढ़ तों लिखदे ने कि अज फिर तेरे प्रेम की बारिश हो रही है, आज फिर तेरे प्रेम की बारिश हो रही है। मैं जलमग्न हो रहा हूँ, तुम घटा बन आई हो, मैं बादल बन बरस रहा हूँ। गगनप्रीत कौर जो कि टांडा तो ने लिख देने के, वो बातूनी है पर उसकी हर बात प्यारी है, उसकी सादगी ही दुनिया में सबसे न्यारी है। फासले जितने भी हों हमारे दरमियाँ, उस कोहिनूर दिल पर हुकूमत हमारी है। वाह जी वाह, बहुत ही सोहना शेर तुसी साडे नाल सांझा कीता है। मेन बाजार पिंड चौंक चक्का जिला बठिंडा तो बसंत टेलर ते उन्हां दा बेटा जगतीप सिंह जस्सल लिखते ने कि तेरे बाजों साडा नहीं होर कोई सजना, तू ही रब है साडा ना होर कोई लभना। ये जिंदगी करती नाम तेरे, प्यार तेरे दियां तंदा दे नाल असी नाल तेरे बजना। इश्क साडे लई तू ही हीर ते तू ही है रांझा, जिंदगी भर तैथों वख नहीं होना, पै गईआं ने सांझा। जिन्ना मर्जी दुनिया दबना चाहे ना जस्सल ने दबना, तेरे बाजों साडा कोई होर नहीं सजना, तू ही रब साडा ना होर कोई लभना। तो इदा ही बहुत सारे दोस्त साढ़े नाल जुड़े हुए ने, बहुत ही प्यारियां प्यारियां शायरियां साढ़े नाल सांझियां कर रहे ने। तो जिहड़े दोस्त अजे सिर्फ इंजॉय कर रहे ने प्रोग्राम, शेरो शायरियां सुन रहे ने, कवितावां सुन रहे ने ते गज़लां सुन रहे ने, मैं तुहानू कह रही हाँ कि भाई तुसीं अपनी लिखी हुई कविता क्यों नहीं सांझी कर रहे साढ़े नाल। जो तुसीं लिख के किसी कोने च छुपा रखी है, अज असीं इस प्रोग्राम दे विच उही लुकाईयां होईयां जिहड़ियां तुहाडियां कवितावां ने ना, उह तुहाडे तों कढवाउणियां ने। किवें कढवाउणियां ने? इस नंबर राहीं, इस प्रोग्राम राहीं। साडा वट्सएप नंबर हैगा है जी 9855 10 10 9855 10 10 27। तो थोड़े लिए जगजीत सिंह होरां दी एक बहुत ही प्यारी जी गज़ल पेश कर रही हाँ।

लाजिम है इस तरह उसकी याद आना, लाजिम है इस तरह उसकी याद आना, हो सकता है उसको बनाने के बाद बची हुई मिट्टी से खुदा ने मेरा दिल बनाया हो। वेलकम बैक, सुन रही हूँ प्रोग्राम दिलाज शायर, अपनी दोस्त होस्ट आर जे रिया दे नाल। तो बहुत सारे दोस्त बहुत ही प्यारियाँ प्यारियाँ कवितावान साढ़े नाल सांझियाँ कर रहे हैं, जिन्हों पढ़ के बड़ा ही मज़ा आ रहा है, तो थोड़े नाल भी सांझा मैं जरूर करूँगी। ये गज़लां, ये नज़मां,

हिचकियां बढ़ाकर ये कैसी उलझने बढ़ा रहे हो, हिचकियां बढ़ाकर ये कैसी उलझने बढ़ा रहे हो, आंखें बंद हैं फिर भी नजर आ रहे हो। कहते हो दूर हो गए हो मेरी जिंदगी से, फिर ख्वाबों में आकर क्यों सताए जा रहे हो। प्रोग्राम तो इंजॉय कर रही हूँ, दिलाज शायर है अपनी दोस्त होस्ट आर जे रिया के नाल। जो प्रोग्राम लैके आने ना, ये अपने सारे लिसनर्स ही लैके आने कि तुसी सारे जो सानू इन्ना प्यार करते हो, तो इन्नी सोहनी सोहनी कवितावां साडे नाल, इन्नी सोहनी सोहनी कहानियां, इन्नी सोहनी सोहनी शेरो शायरियां साडे नाल सांझियां करते हो। सो ये जो प्रोग्राम है ना, तुहाडे सारियां लई एक तोहफा है। असीं तुहानू तुहाडे लई प्यारियां प्यारियां गज़लां जिहड़ियां हैगियां आ पेश करदे हां, सोहणे सोहणे शेरो शायरियां असीं तुहानू सुणांदे हां, ते नाल दी नाल तुहानू इस विच शिरकत करन दा, शामिल होण दा न्यौता भी दिंदे हां। शामिल किमें होना यह भी दस दिनी हाँ। साडा वट्सअप नंबर हैगा है जी 9855102 9855 10027। इस नंबर पर तुसी सानू टेक्स्ट मैसेज करके अपनी लिखी हुई कोई भी रचना, कविता, शेरो शायरी, नज़म साडे नाल सांझी कर सकते हो। जेकर तुसी किसी होर दी लिखी हुई कविता साडे नाल सांझी कर दिओ तो उन्हां दा भी नाम जरूर लिख दिओ। सुभाष चंद्र वत्स गिद्दड़वाहा तो लिखते हैं कि रिश्तों की चादर को अपने गिर्द लपेटे फिरता हूँ, हम भी कैसे पागल हैं इश्क इस एक ख्वाब समेटे फिरते हूँ। कैसे कैसे अरमानों की राख हमारी मुट्ठी में है, कैसी कैसी आशाओं की चिता जलाए बैठे हूँ। होता अगर मैं शायर, नाम भी लिख देते, मोहम्मद मुजफ्फर मोहम्मद अरमान पिंड खुर्द जिला मलेरकोटला तो लिखते हैं कि होता अगर मैं शायर, कोई नज़में लिखता तेरी अदाओं पे, शायरी करता तेरी आँखों पे, गज़लें लिखता तेरी आँखों पे, कायल होता तेरी चाल का, सदके जाता तेरी निगाहों पे, मर ही जाता तेरे हुस्न पर, टूट कर गिरता तेरी बाहों में। होता अगर शायर मैं, कोई नज़में लिखता तेरी अदाओं पे। बहुत ही सोहनी कविता तुसी साडे नाल सांझी कीती है, तो इदा ही होर भी बहुत सारे दोस्त लगातार साडे नाल जुड़े हुए हैं, बहुत ही सोहनिया सोहनिया कवितावां नज़मां साडे नाल सांझियां कर रहे हैं। तो जिहड़े दोस्त अजे भी उडीक

0: की वाणी आकाशवाणी
1: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
2: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है। नमस्कार, रेडियो डॉक्टर के साथ आ गई है आपकी दोस्त शालिनी मित्तल। स्वीकार करिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। प्रतिदिन आप जुड़ते हैं हमारे साथ आकाशवाणी के एफएम रेनबो चैनल पर 102.6 पर और साथ ही साथ प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी आप सुनते हैं। क्या सुनते हैं? प्रतिदिन रेडियो डॉक्टर सुनते हैं ना। और बिल्कुल हमारे साथ कैसे जुड़ते हैं ये तो आप जानते हैं। और आपको बता दें कि आज का जो अंक है बहुत खास इसलिए है कि हम फिटनेस की बात करेंगे। लेकिन कैसे जुड़ेंगे, आप अपने प्रश्न कैसे पूछेंगे वो भी आपको थोड़ी देर से बताएंगे। क्या है फिटनेस आपके हिसाब से? क्या शारीरिक रूप से आप स्वस्थ हैं या पतले दुबले हैं तो आप फिट कहेंगे अपने आप को? या मेंटली अगर आप फिट हैं तो फिट कहेंगे अपने आप को? क्या डेफिनेशन होती है एक फिट आदमी की? ये सारी बातें आज हमें लगता है इस कार्यक्रम के बाद आप पूर्ण रूप से समझ जाएंगे। और ये समझाने के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है दो ऐसे विशेषज्ञ जो अपने अपने

0: क्षेत्र के जानकार हैं, तो आपका इंट्रोडक्शन कराना चाहेंगे हमारे दो गेस्ट से। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मधु खुराना, आप योग स्पेशलिस्ट हैं, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग में आप काम करती हैं। आप पिछले 13 साल से थेरेपी और योग टीचिंग के साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार।
1: धन्यवाद मैम।
0: और हमारी दूसरी आज गेस्ट हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट डॉक्टर रीता गंगवानी, आप पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट कोच हैं, आपको ऑनर किया जा चुका है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा। नमस्कार और स्वागत।
1: शुक्रिया मैम, थैंक यू।
0: तो अपने श्रोताओं को बता दें कि आज का हमारा विषय है फिटनेस मंत्रा। इंटरनेशनल डे ऑफ योग का महत्व क्या है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और सारी बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। एक दिन की, एक महीने की बात नहीं है, फिटनेस हमारे जिंदगी का जीने का तरीका है। और सबसे पहले मैं चाहूंगी डॉक्टर मधु खुराना, आप बताइए व्हाट इज फिटनेस अकॉर्डिंग टू यू।
1: जैसे कि मैम अभी आपने कहा कि क्या फिटनेस सिर्फ शरीर की आकृति से सीमित है, कि आप दुबले पतले हैं तो क्या फिट हैं, ऐसा नहीं है। आपने बहुत बार ऐसे इंस्टेंसेस देखे होंगे कि लोग बहुत ज्यादा जिमिंग करते हैं, वो दिखने में तो दुबले पतले दिखते हैं बट मानसिक रूप से तनाव से ग्रसित हैं। और बहुत ज्यादा आजकल हार्ट अटैक और इस प्रकार की जो है आप देखेंगे लोगों में लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, डायबिटीज, हाई बीपी, इस तरह की समस्याएं आ रही हैं, चाहे लोग दुबले पतले क्यों ना हो। जैसे पीसीओडी, जिसे अब पीएमओएस बोला जा रहा है, इस तरह की समस्याएं महिलाओं में बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल रही है, चाहे वो दुबली पतली ही क्यों ना हो। तो मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। हमारे आयुर्वेद में भी कहा गया है समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना स्वस्थ इति विधीयते। यानी जब कि आपके समदोष यानी दोषास वात पित्त का बैलेंस हो, समअग्नि आपके अंदर अग्नि जो है डाइजेस्टिव फायर है वो बैलेंस्ड हो, समधातु सप्त धातु से हमारा शरीर बना है वो बैलेंस्ड हो, मल क्रिया प्रॉपर एक्सक्रीशन हो, प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना दैट इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कि प्रसन्न है हम आत्मा से, इंद्रियों से, सेंसेस हमारी कंट्रोल्ड है मन से, तभी हम कह सकते हैं स्वस्थ, कि हम फिट हैं, स्वस्थ हैं। ऐसे ही अगर हम देखें जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO ने भी कहा है कि अगर आप सोचते हैं कि आपको कोई बीमारी नहीं है सिर्फ, तो आप फिट नहीं है। अगर आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से जो है स्वस्थ हैं, तभी हम कह सकते हैं कि आप फिट हैं। इसमें एक फोर्थ कंपोनेंट आध्यात्मिक भी ऐड किया गया
0: जी,
1: है
0: बिल्कुल।
1: जी तो अगर आप इन सब से अगर आप समझ पाते हैं कि आप फिजिकली भी अपने आप को फिट समझते हैं, कि आपके अंदर कोई रोग नहीं है, ठीक है, और ऐसा फील कर रहे हैं आप, सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके रिपोर्ट्स में ऐसा दिख रहा है, आप ऐसा अनुभव भी करते हैं, मानसिक रूप से भी आप खुश हैं, तनाव नहीं है आपको, कोई भी समस्या हो लाइफ में आप उसे जो हैंडल कर पा रहे हैं, मैनेज कर पा रहे हैं,
0: ये भी इम्पोर्टेंट है,
1: इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि तनाव तो देखिए सिचुएशंस तो ऐसी रहेंगी हमारे आसपास, बट क्या आप उसमें समत्वम जिसे हम बोलते हैं योग में उसे अटेन कर पा रहे हैं, कि सुख हो, दुख हो, लाभ हो, हानि हो, जय हो, पराजय हो, आप बैलेंस्ड हैं। इसे भगवद गीता में स्थित प्रज्ञ भी कहा जाता है। क्या आप उस स्थिति के आसपास भी हैं और आप सामाजिक रूप से उससे जुड़ पा रहे हैं, जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि योग जो है वो एक एक्सरसाइज नहीं है, योग जो है वो खुद से जुड़ना, उसके बाद आप विश्व से जुड़ रहे हैं और प्रकृति से जुड़ना है, तो क्या आप इस प्रकार इस हर लेवल पर जुड़ पा रहे हैं, तो ही हम कह सकते हैं कि हम फिट हैं, हम स्वस्थ हैं।
0: जी बहुत बहुत जरूरी बातें आपने यहाँ पर बताई हैं, कि योग को भी आपने बताया, हम फिटनेस को एज अ होल लेके चल रहे हैं। बहुत तरीके होते हैं लोगों के अपने फिट रखने के लिए, कई लोग जिम जाते हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं, कुछ योग करते हैं, तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम सारी बातें चाहेंगे हमारे श्रोताओं तक पहुंचे। और डॉक्टर रीता हमारे साथ हैं, रीता जी ये बताइए आपके से व्हाट इज फिटनेस।
2: मैं मधु जी के साथ बहुत सहमत हूँ कि लोग यही समझते हैं कि जिम जाना, डाइट करना, वेट लॉस, यही आप फिटनेस को मानते हैं। इन्हीं के जो इन्होंने डिस्क्राइब की अलग अलग धारणाएं, उनमें मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि धरती 5 तत्वों से बनी है, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश और अग्नि। और आप देखेंगे भगवान ने पांचों के पांचों जो भी तत्व हैं वो बराबर रखे हैं। एक ज्यादा होता तो हम रहने लायक यहाँ नहीं होते धरती पे। वैसे ही एक इंसान की एज अ पर्सनैलिटी कोच जो मैं देखती हूँ, वो ये देखती हूँ कि फिटनेस के भी 5 तत्व हैं, फिजिकल यानी कि अच्छा दिखना, इमोशनल अच्छी सोच रखना, स्पिरिचुअल खुद पे विश्वास होना, कल्चरल ऊंच नीच का भेदभाव न करना, और साथ में सोशल लोगों के बीच में उठने बैठने की तमीज। मैं कुछ इस हिसाब से देखती हूँ कि ये पांचों भी बैलेंस होने चाहिए, क्योंकि आजकल के जमाने में ये चीजें भी देखी जाती हैं जो फिटनेस में ही आती हैं। तो फिटनेस मेरे हिसाब से इन पांचों तत्वों का, फिजिकल तत्वों का बैलेंस है, जो आपको जिंदगी में बहुत आगे लेके जाएगा। बस आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि तत्व कौन सा कम है मुझ में।
0: जी, जी।
2: ये पता कर लेंगे जिस दिन और बैलेंस कर लेंगे, तो डेफिनेटली जिंदगी में बहुत आगे जाएंगे।
0: जी तो अगर ऐसा कोई तरीका है कि इसको कैसे जज करना है, तो वो भी हम आज डॉक्टर रीता से जरूर जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे श्रोता हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं और हमारी कोशिश यही होती है कि हर तरह से हम

वो स्वस्थ रहने की दिशा में प्रोत्साहन दे सके। आपका कोई फिटनेस मंत्रा है या आपकी कोई डेफिनेशन है फिटनेस की, वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक म्यूजिकल ब्रेक लेंगे और एक प्यारा सा गीत सुनकर वापस आएंगे, लेकिन आप हमारे साथ रहिए क्योंकि बहुत सी बातें फिटनेस से रिलेटेड आज आपको जानने को मिलेंगी। सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर।

0: वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर और मैं हूं शालिनी मित्तल और मेरे साथ मेरे दो एस्टीम गेस्ट हैं डॉक्टर मधु खुराना और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट डॉक्टर रीता गंगवानी. बहुत सारे मैसेजेस भी आप लोगों के आ चुके हैं और फोन कॉल्स पर भी हमारे गेस्ट हमारे लिसनर्स मौजूद हैं. तो पहले फोन कॉल ले लें मैम.
1: जी
0: चलिए. हेलो.
2: हेलो
0: जी नमस्कार. स्वागत कार्यक्रम में आपका.
2: राजेंद्र मेरा नाम है और मैं करमपुरा दिल्ली से बोल रहा हूँ.
0: जी पूछिए अब सवाल.
2: हाँ पहले तो शालिनी मैम को शालिनी भाई नमस्कार.
0: जी नमस्कार.
2: और बॉस मैम को भी नमस्कार. मेरे ना तीन चार छोटे छोटे सवाल हैं प्लीज. पहला सवाल मेरा ये है कि चूंकि ये मशीनी युग है तो जाहिर सी

0: बात है, महीनों काम सेकंडों मिनटों में करके देने हैं, तो इसके लिए हमें कुछ ऐसे टिप्स बताएं कि क्वालिटी और स्पीड और कॉन्सेंट्रेशन के साथ हम काम कर सकें, कोई डाइट, कोई एक्सरसाइज। दूसरा सवाल मेरा ये है कि दिमागी तौर पर फिटम फिट गुडम गुड रहने के लिए कई लोग अखरोट खाते हैं और बादाम खाते हैं, कई लोग पिस्ता खाते हैं और केसर खाते हैं, तो इसमें से बेस्ट डाइट कौन सी होगी। तीसरा सवाल मेरा ये है कि मैंने ये नोट किया कि कई ऐसे शख्स होते हैं मैम कि वो होते पतले दुबले हैं पर फिर भी 25-25 किलो वेट उठा लेते हैं, और कई लोग होते हैं हट्टे कट्टे मुड़े तगड़े फिर भी उनसे 5 किलो वेट भी नहीं उठता, तो इस तरफ हमें क्या करना चाहिए। और चौथा और आखिरी सवाल वो ये है कि मैम क्या कहती है, वॉइस जो हमारी आवाज होती है तो इसको मतलब मेलोडी में मधुर करने के लिए क्या कोई डाइट को एक्सरसाइज भी होती है क्या, जरा ये बताएं।
1: बहुत लोग ऐसे होते हैं जो दिखने में लगता है कि हड्डे कट्टे हैं बट उनमें इतना स्ट्रेंथ नहीं होता है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस कि आपकी बॉडी में कितना फैट है, कितना मसल मास है, कितना फैट फ्री मास है, कितना वाटर कंटेंट है, और ओवरऑल आप कितना ज्यादा आपकी मसल स्ट्रांग है, आपकी बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल है। फिटनेस के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं कि कितना एंड्योरेंस है आपकी बॉडी में, कितना स्ट्रेंथ है आपकी मसल्स में और कितनी फ्लेक्सिबल है, तो इन सब लेवल पर हम फिटनेस को मेजर कर सकते हैं। तो हो सकता है कोई दिखने में ऐसा लग रहा हो बट दैट कैन बी एन इल्यूजन, जब तक कि आप डेली अभ्यास ना करें, रेगुलरिटी ना रखें अपनी रूटीन में, दिनचर्या में, तब तक हम नहीं कह सकते किसी को। सिर्फ आउटर अपीयरेंस से हम जज नहीं कर सकते हैं। कई लोग बहुत दुबले पतले दिखते हैं बट वो जैसे कि उन्होंने बोला बहुत हैवी वेट भी उठा लेते हैं, तो उनका मेटाबॉलिज्म कैन बी गुड हाई एंड दिस इज पॉसिबल कि उनकी बॉडी में ज्यादा स्ट्रेंथ हो और मोर एंड्योरेंस हो। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आपकी रूटीन आपके लाइफस्टाइल के ऊपर ये निर्भर करता है, सिर्फ जेनेटिक्स ही नहीं।
2: तो क्या होनी चाहिए रूटीन और लाइफस्टाइल जिससे कि हम इतने स्ट्रांग बन जाए।
1: जी मैं तो योग एक्सपर्ट हूँ, योग ही सबसे पहले मेरे मन में आता है कि आप अगर रेगुलर जो है योग प्रैक्टिस करते हैं, जरूरी नहीं है कि आप 1 घंटा करें, अगर आपके पास आधा घंटा है आप आधा घंटा करें, 45 मिनट्स है 45 मिनट्स करें, और अगर वो भी नहीं है तो 5 मिनट्स का वाई ब्रेक जो है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने जो है बनाया है जो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है, 5 मिनट का अभ्यास भी अगर आप करें तो आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, एनर्जी लेवल्स इम्प्रूव कर सकते हैं, यू कैन रिफ्रेश रिफोकस योरसेल्फ। तो अगर उतना भी नहीं तो आप अपने सिर्फ श्वास पे ध्यान दीजिए और रिलैक्स कीजिए तो भी आप अपने आप से जुड़ रहे हैं और आप बेटर फील कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन नॉट जस्ट ऑन द बॉडी बट ऑल्सो ऑन द ब्रेथ, ऑल्सो ऑन द माइंड, तो उन सभी लेवल्स पे वर्क करना जरूरी है।
2: तो माइंड के लिए क्या कर सकते हैं, मेडिटेशन या कुछ?
1: जी मैम, हमारा ना जो पंचकोश का थ्योरी आता है जो उपनिषद से लिया गया, तित्री उपनिषद से, जिसमें माना गया है कि हमारा जो शरीर है वो सिर्फ फिजिकल आउटर बॉडी नहीं है। मॉडर्न साइंस तो ये समझती है कि हम सिर्फ ये आउटर बॉडी फिजिकल बॉडी है, योग कहता है कि हमारे 5 कोशास हैं, दे आर 5 लेयर्स ऑफ आवर एक्सिस्टेंस, जिसमें जो आउटर है वो अन्नमय है विच इज मेड अप ऑफ फूड, कि हम कैसा आहार खाते हैं उस पर डिपेंड करता है। देन उसके बाद आ गया प्राणमय कोश विच इज अ प्राणिक शीथ इनसाइड अस, कि हमारे अंदर जो प्राणों का प्रवाह है वो किस प्रकार हो रहा है, कितना बैलेंस्ड है हमारी नाड़ीज में। देन आफ्टर दैट देर इज अ मनोमय कोश विच इज अ मेंटल लेयर, मेंटल शीथ। उसके बाद एक विजडम लेयर आती है विज्ञानमय, एंड द इनर मोस्ट इज द आनंदमय विच इज वेरी मच क्लोज टू अवर ट्रू नेचर, सच्चित आनंद ब्लिसफुल शीथ हमारी आती है। तो ऐसा माना जाता है, योग वशिष्ठ में ऐसा कहा गया है कि जो डिजीज की शुरुआत होती है वो मनोमय कोष से होती है, मन से होती है, और जब हमारे हम मन से तनाव में होते हैं, चिंता में होते हैं या दुविधा में होते हैं किसी भी, तो लॉन्ग टाइम तक जब ऐसा रहे तो वो हमारे प्राणिक लेयर को इम्पैक्ट करता है नेगेटिवली, यानी आपकी ब्रीदिंग का तरीका बदल सकता है। अच्छा। आप गलत तरीके से श्वास ले रहे हो ऐसा संभव है, और फिर अल्टीमेटली वो रिफ्लेक्ट करता है एज अ डिजीज। तो आज जो हम किसी को कोई समस्या देख रहे हैं उसकी शुरुआत कई साल पहले से हो सकती है। ऐसा हो सकता है उस व्यक्ति को बहुत समय से तनाव रहा हो और उसने ध्यान ना दिया हो, उसकी प्राणिक शीत भी इम्पैक्ट हो गई हो, उसकी ब्रीदिंग हैफिजर्ड हो, पैल्पिटेशंस हो, आपने सुना होगा लोगों को कि बहुत ज्यादा हार्ट बीट बढ़ जाती है, एंग्जाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, नींद नहीं आ रही है ठीक से, और अल्टीमेटली वो रिफ्लेक्ट करता है एज अ डिजीज। तो अगर हम इन सभी लेयर्स पे काम करें, नॉट जस्ट ऑन द आउटर बॉडी, हम प्राणिक जो है शीत उसके लिए प्राणायाम की प्रैक्टिस है, मनोमय के लिए हम बात कर रहे हैं कि हमारे जो ध्यान के अभ्यास हैं उस पे प्राणायाम एंड ध्यान बोध इस तरह की प्रैक्टिस, विजडम शीत जो हमारी जो है उसके लिए काउंसलिंग इज इम्पॉर्टेंट, योगिक काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, तभी हम जो है अपने क्लोजेस्ट जो हमारा ट्रू नेचर है आनंद में उससे जुड़ सकते हैं और हर परिस्थिति में हम जो है आनंद की स्थिति में रह सकते हैं जो कि हमें स्वस्थ भी रख सकता है। और साथ ही साथ जो योग के विभिन्न कॉम्पोनेंट हैं जिसमें कि हमारा आसन आ गया जो हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ पे काम करता है, आसन इन भवे दृढ़म ऐसा कहा गया हठ योग में कि आसन करने से शरीर में दृढ़ता आती है, घृण संहिता के टेक्स्ट में इसका वर्णन मिलता है। और

0: आसनिन रुजो हंती यानी डिजीज को दूर करता है और कुर्यात तदासनम स्थैर्यम आरोग्यम च लाघवम यानी आसन करने से स्थिरता आरोग्यता डिजीज लेसनेस और लघुता शरीर में लाइटनेस आती है। इस प्रकार और तत्व द्वंद्वान भी घाता है ऐसा हमारे पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है कि आसन करने से आपके फिजिकल मेंटल सब तरह के कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो दूर होते हैं। तो इस तरह से हम अगर अष्टांग योग की प्रैक्टिस यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और अल्टीमेटली विच इज समाधि तो अगर हम इसको फॉलो करते हैं इस रूटीन को हम डेफिनेटली इन सभी कॉम्पोनेंट्स का ध्यान रख सकते हैं।
1: जी तो सुनिए श्रोताओं आप सुन रहे हैं कि ये फिटनेस इतना एक छोटा सा या ऊपर दिखने वाला एक वर्ड नहीं है, ये कितना डेप्थ रखता है। बहुत सारी बातें डॉक्टर मधु ने बताई, बहुत सारे हमारे श्रोता फोन लाइन पर भी वेट कर रहे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। हेलो
2: हेलो
1: जी अपना नाम बता दें।
2: मेरा नाम विश्व आसिफ खान है मैम।
1: जी कहाँ से बोल रहे हैं?
2: यूपी मेरठ से बात कर रहे हैं।
1: जी क्या पूछना चाहते हैं?
2: जैसे कि मैं खाना खाता हूँ ना तो मेरे को गैस की जब खाना बनता है तो इसके लिए बताइए क्या कोई उपाय है?
0: अगर आप खाने में अत्यधिक मसाले का उपयोग करेंगे तो आपको बहुत सारी समस्याएं जैसे गैस एसिडिटी एसिड रिफ्लक्स की समस्या हो सकती है। तो पहले तो आपको मिताहार लेने की आवश्यकता है। तो आप किस तरह की डाइट लें? सुस्निग्ध मधुराहार चतुर्थांश विवर्जते भुजते शिव संप्रते मिताहार से उच्चते यानी पहले तो भूख से कम एक चौथाई भूख से कम आपको खाना खाना है और सरल सिंपल फूड आपको खाना है। सात्विक आहार की बात कही गई है भगवद गीता में भी कि अगर आप बहुत ज्यादा तामसिक या फिर राजसिक भोजन जैसे मिर्च मसाले युक्त भोजन करते हैं तो ये डेफिनेटली शरीर में रोग और इस तरह की बीमारियां एसिडिटी गैस कॉन्स्टिपेशन इस तरह की प्रॉब्लम्स को जन्म दे सकता है।
1: समय भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहते हैं कि बिल्कुल खाए और आप सो गए या मूवमेंट नहीं किया।
0: जी बिल्कुल
1: वो भी इंपॉर्टेंट,
0: ये बहुत इंपॉर्टेंट कि खाना खाते ही ना लेते। अगर आप डिनर कर रहे हैं तो अर्ली डिनर की बात कही गई है कि समय पर भोजन ले लें और उसके बाद दो घंटे तीन घंटे का कम से कम गैप रखें कि खाना खाते ही लेटेंगे तो वो डेफिनेटली एसिड ऊपर की तरफ आएगा और इस तरह की समस्याएं जैसे चेस्ट में आपको बर्निंग सेंसेशन इस तरह की फील हो सकती है। और साथ ही साथ योगाभ्यास करें कि आपके कोर मसल स्ट्रांग हो, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बेटर काम करें। आप आयुर्वेद की दिनचर्या भी फॉलो कर सकते हैं आप कि किस समय खाना है कितना खाना है, ठीक है? वो अपने प्रकृति अनुसार खाना है आपको कि क्या भोजन मौसम के अनुसार ऋतुचर्या।
1: और हम यहाँ पर समय समय पर आयुर्वेद पर भी आधारित कार्यक्रम करते हैं तो आप उनको भी आप सुनते रहिए। अच्छा हमारे साथ डॉक्टर रीता गंगवानी हैं तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी रीता जी कि जैसे एक फिटनेस की जब हम बात करते हैं और जब किसी पेशेंट में देखते हैं हम किसी सेलिब्रिटी को देखते हैं तो उनकी फिटनेस और फिटनेस नॉर्मल फिटनेस में क्या फर्क आप देखती हैं क्योंकि आप उनको कोच करती हैं?
3: उनकी जो आप देखेंगे लाइफस्टाइल बहुत ही स्ट्रेसफुल होता है, सारा दिन कैमराज के आगे मेकअप रूम्स में इधर से उधर भागना इवेंट्स में, तो डेफिनेटली उनको बहुत ज्यादा जरूरत है अपने फिटनेस की तरफ ध्यान रखने का। तो ऐसे में उनको सबसे इम्पोर्टेंट जैसे मधु जी ने कहा डाइट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि चलते फिरते कुछ भी खा लेना फास्ट फूड खा लेना तो वो उनको इफेक्ट करता है। तो ऐसे में मैंने देखा है कि बहुत से ऐसे जो बच्चे हैं सेलिब्रिटीज हैं वो सुबह काफी जल्दी उठते हैं, इससे पहले कि वो अपनी दिनचर्या शुरू करें वो अमृत वेले में उठते हैं क्योंकि उनको फिजिकल तकलीफों से कहीं ज्यादा मेंटल तकलीफों की तरफ ज्यादा क्योंकि स्ट्रेस इतना होता है। तो इसीलिए पहले तो खुद को डी स्ट्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है उनके लिए। तो मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जो वो सुबह अमृत वेले में करते हैं और इसके साथ साथ जो मैं देखती हूँ और जो मैं सिखाती भी हूँ वो है ग्रैटिट्यूड। जिंदगी में अगर आप शुक्रगुजार हैं किसी चीज के लिए, और हम लोग ज्यादातर कंप्लेंट्स में लगे रहते हैं और कंपैरिजन में लगे रहते हैं क्योंकि ये जो ग्लैमर वर्ल्ड है वहां पे बस यही है कि आज आप हैं और कल नया चेहरा आया तो आपको कोई नहीं याद रखता, तो ये चीज होगी होती रहती है।
1: इनसिक्योरिटी
3: में रहते हैं तो आपको खुद को बहुत ही बैलेंस करना पड़ता है। तो खुद के लिए एटलीस्ट मेरे पास है क्या, अब जैसे कुछ मेरे स्टूडेंट हैं जो इंटरनेशनल गए थे और वहां बोला मैम इतना टफ रूटीन है आई एम जस्ट बर्नड आउट, हमें सोने को भी नहीं मिलता एक घंटा भी नहीं मिलता है। तो फिर उनको मैंने कहा ठीक है तुम ये सोचो कि कितने ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे शूज में होना चाहेंगे तुम्हारी जगह होना चाहेंगे, ग्रेटफुल रहो कि भगवान ने तुम्हें मौका दिया। तो ये लोग बहुत सारा मेडिटेशन करते हैं ग्रैटिट्यूड करते हैं और डिसिप्लिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनकी लाइफ में क्योंकि टाइम पे उठना टाइम पे सोना, और कितने ऐसे हैं जो टाइम पर अपने फोन भी बंद कर देते हैं। तो डिटॉक्सिंग करना अपने आप को डिजिटल मीडिया से क्योंकि अगर हर चीज अपने बारे में पढ़ने लगे तो और ज्यादा टेंशन में आते हैं। तो मेंटल फिटनेस ज्यादा उनके लिए इंपॉर्टेंट है रादर देन फिटनेस। ऑफ कोर्स बॉडी इंपॉर्टेंस रखती है क्योंकि आप एक ग्लैमर वर्ल्ड में हैं तो जिम के साथ साथ डाइट के साथ साथ मेंटल फिटनेस बहुत मैटर करती है स्पेशली ग्लैमर वर्ल्ड में।
1: जी तो बहुत इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर रीता ने हमें बताई। हमारे एक लिसनर हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। हेलो
4: नमस्ते
1: जी। नमस्कार बताएं क्या नाम है आपका?
4: नमस्ते कमलेश है ग्रेटर नोएडा।
1: अच्छा जी कमलेश जी बताइए क्या पूछना है?
4: ये पूछ रही हूँ कि जैसे हम खाना

0: खा लेते हैं, उसके बाद वो पेट में दर्द हो जाता है। और जैसे जैसे रात का भोजन बचा हुआ होता थोड़ा बहुत, सोचते क्या फेंकेंगे, इसको खा ही लें, कि आजकल महंगाई बहुत है, तो वो सही रहता ही नहीं।
1: खाना न्यूट्रिशन पे हम बात करें, कमलेश जी जरूर सुनिए हमारा प्रोग्राम और सही न्यूट्रिशन के बारे में हमारे जो विशेषज्ञ आपको बता रहे हैं। एक जो इनका प्रश्न है बहुत कॉमन है और ज्यादातर लेडीज इस चीज को करती हैं कि कोई चीज बची, और जो उन्होंने कहा वो भी सही है कि इतनी महंगाई है और कोई चीज को फेंकना भी ठीक नहीं। क्या कहेंगी, इस तरह का खाना खाया जा सकता है और कितने घंटों तक बना हुआ खाना खा सकता है आदमी?
2: मैं तो यही कहूंगी कि अपने शरीर को जो है डस्टबिन ना बनाए, और जो है भोजन हमेशा फ्रेश खाना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि 3 घंटे के बाद जो खाना बना हुआ है उसको 3 घंटे के बाद नहीं खाना चाहिए, वो तामसिक होने लगता है। तो जो सात्विक आहार भी आपको लगता है आप हेल्दी फूड खा रहे हैं, अगर आपने उसको फ्रिज में रखा और नेक्स्ट डे खाया तो उसके गुणों में बहुत चेंजेस आ जाते हैं। तो उतना ही बनाएं जितनी आवश्यकता है, और अगर बच जाता है तो किसी गरीब को दे दें, पर कोशिश करें कि आप हेल्दी फ्रेश फूड खाएं।
1: जी
2: जी
1: तो कमलेश जी आपको जवाब मिल गया, और कुछ मैसेजेस भी हैं हमारे पास। ये हमें लिखकर भेजा है हमारे श्रोता हैं युवराज चौहान जी, कहाँ बुरहानपुर एमपी से इन्होंने मैसेज किया है कि मेरी उम्र 30 इयर्स है और हाइट 5'9" है, वेट 52 है। वैसे मुझे कोई परेशानी नहीं है, पर लोग बोलते हैं कि कुछ खाया पिया कर, वैसे मैं 50 kg की बोरी उठा लेता हूँ।
2: वेट तो कम है बट अगर इतना हैवी वेट भी उठा लेते हैं, हमारे किसान हैं तो डेफिनेटली बहुत शक्तिशाली हैं और अपना डाइट और बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब हो सकता है वो डाइट कम ले रहे हो, अगर उन्हें कमजोरी फील हो रही होती तो हम डेफिनेटली ये समझते कि कोई समस्या है उनके साथ, पर वो हेल्दी फील कर रहे हैं, अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, तो हम उनको ये तो नहीं कह सकते कि इन्हें कोई समस्या है। तो डेफिनेटली आप योगाभ्यास भी कर सकते हैं और साथ में डाइट को थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट की अमाउंट बढ़ाई जा सकती है, इसमें प्रोटीन्स बढ़ाए जा सकते हैं, तो समतोमिक बैलेंस स्टेट में पहुंच जाएंगे। योग जो है सिर्फ वो वेट लॉस के लिए नहीं है, आप एक समतोमिक बैलेंस स्टेट पे पहुंच जाते हैं उसे करके, तो योग के अभ्यास आसन वगैरह कर सकते हैं, बॉडी में स्ट्रेंथ भी आएगी जी। और अपने डाइट पर थोड़ा और ध्यान दें, जो हाई कार्ब्स फूड है, जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स फूड है, मिलेट्स, ये सब जो हाई एनर्जी फूड जो है वो सब डेफिनेटली अपनी डाइट में शामिल करें तो मदद मिलेगी।
3: मधु जी ने जैसे कहा कि अगर उनको कोई तकलीफ नहीं है तो हो सकता है बॉडी कॉम्पोजिशन भी वैसी हो, पर इन्होंने जो ये बात कही ना कि लोग कहते हैं कि तुम बहुत पतले हो पतले हो, तो इन्हें मैं कहना चाहूंगी कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जब भी लोगों को कोई काम होता नहीं, वो कुछ भी डिफरेंट देखते हैं, या हो सकता है आप इतने फिट दिखाई देते हो कि कुछ जेलस भी फील करते हैं लोग। और अगर कोई आपको ऐसा कह रहा है, मेरा तो ये मानना है कि जेलसी एक किस्म की इनडायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट है कि कोई आपको बोल रहा है कि आप फिट दिखाई दे रहे हैं, तो लोगों की बातों में मत आइए, खुद को एक्सेप्ट कीजिए, कबूल कीजिए मैं ऐसा हूं। आप फिट है सोचने की कोई बात ही नहीं, अगर आपको प्रॉब्लम होती तो अलग बात थी, पर अगर आप फिट हैं तो कबूल कीजिए कि मैं ऐसा ही हूं। बार बार अगर आप इसके बारे में सोचेंगे कि लोग क्या कहेंगे, मैं पतला हूं, तो कहीं ना कहीं आप अपने ही शब्दों से, अपने ही थॉट से खुद को बीमार कर देंगे। और कई बार बीमारी हमारी सोच से ही आ जाती है, हम जब नेगेटिव सोचने लगते हैं, बाहर से किसी ने कुछ कहा और वो हमने सुना और वो हमारी बॉडी में नेगेटिविटी के रूप में बाहर निकलता है। तो आप बिल्कुल फिट हैं, बढ़िया हैं, आप लोगों की बातों पे ध्यान मत दीजिए, कबूल कीजिए कि आपकी बॉडी ऐसी है और आप खुश रहेंगे।
1: अच्छा एक चीज और बताइए डॉक्टर गीता, जैसे हम जब सेलिब्रिटीज की बात करते हैं और कुछ लोग तो जैसे साइज जीरो की बात भी करते हैं, बहुत बहुत दुबले होते हैं और वो लोग कोशिश भी करते हैं अपने को दुबला रखने की, तो वो फिट होते हैं? जैसे अभी आप कह रही हैं कि बहुत पतले हैं तो कोई बात नहीं,
3: हाँ
1: अच्छी बात है,
3: हाँ
1: तो फिटनेस और एक लुक्स,
3: हाँ
1: ये कहाँ पर बैलेंस कर सकता है, कैसे कर सकता है?
3: आपने बोला साइज जीरो वाले लोग फिट हैं, तो मैं कहूंगी फिट हैं। पहली बात तो ये कि जब आप फिटनेस की बात करते हैं तो कभी आप खुद से ये चीज शुरू मत कीजिए, आपको ऊपर से किसी गुरु की जरूरत है जो आपको प्रॉपर डाइट बताए, प्रॉपर आपका रूटीन बताए, तब आप जीरो में जाएंगे। अगर आप अपने आप को भूखा रख के साइज जीरो के चक्कर में पड़ते हैं, या किसी कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको एनोरेक्सिया की बीमारी होती है, वो खाना खाती हैं फिर उंगली डाल के उल्टी कर देती हैं कि हाँ मेरे को पतला दिखना है, खाना अंदर नहीं रखना चाहिए, तो ये सब भी एक किस्म की बीमारी है। तो आपको पहली चीज, अगर इस तरीके से अपनी बॉडी को मेंटेन करना है, तो पहले किसी विशेषज्ञ को ढूंढे जो आपको प्रॉपरली गाइड सके आपके खाने में, आपकी जिमिंग में, आपके हर चीज में। प्लस इसके अलावा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन में रहेंगे और चीटिंग नहीं करेंगे, अब सामने खाना आ गया, आपसे कहा गया है कि आपको पेस्ट्री नहीं खानी है और आपको मना किया गया, लेकिन पेस्ट्री सामने है और आपसे रहा नहीं गया और आपने पेस्ट्री खा ली, तो फिर डेफिनेटली आप साइज जीरो पे नहीं पहुंचेंगे। तो आप देखेंगे कि ये जितने भी लोग अपने को मेंटेन

0: हैं वो बहुत ही डिसिप्लिन में रहते हैं, मतलब आगे कुछ भी हो सामने नहीं तो नहीं। तो डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है एक अच्छी परफेक्ट लाइफस्टाइल में। और डिसिप्लिन कैसा, सुबह से लेके रात तक, आपके जगने से लेके सोने तक, हर पहर आपको अपने आप को डिसिप्लिन में रखना पड़ेगा, तभी जाके आप अपने फिटनेस के गोल को अचीव कर पाएंगे। आसान नहीं है बट होगा, एक दिन जरूर होगा। हिम्मत मत हारे, क्योंकि जब बीज बोया जाता है तो उसको पेड़ बनने में थोड़ा वक्त तो लगता है।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने बोली, समय लगेगा पर होगा जरूर
0: बिल्कुल।
1: अगर आपका निश्चित दृढ़ है तो। हमारे एक कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो।
2: हेलो, नमस्कार शालिनी
1: जी।
2: जी
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत बेदी जी, कैसी हैं आप?
2: ठीक हूँ, सबसे पुराने योगी मैं ही हूँ।
1: नहीं नहीं, आपसे भी पुराने बहुत सारे लोग हैं।
2: अच्छा, मेरे को 27वां साल है।
1: अच्छा, आप योग करती हैं रेगुलरली?
2: मैं वो थी जो दो कदम नहीं चल सकती थी, तो फिर अब मैं 22 साल से उसी सेंटर की हेड हूँ।
1: चलिए बहुत अच्छी बात, लेकिन आपको भी कुछ पूछना है क्या, कोई प्रश्न है?
2: नहीं, प्रश्न ऐसे है कि मैं इनके थ्रू एक मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि लोग जो टीवी देख के करते हैं वो ना सीखें, क्योंकि ये कहेंगे तो लोग मान जाएंगे, हम गलत को करते हुए भी टोकेंगे तो कोई हमारी बात नहीं मानता।
1: तो जैसा
2: हमें आता है,
1: जैसा अभी रीता मैम कह रही थी कि किसी को गुरु मान के और उनकी ही बात को देखे दिखाई मत करिए, तो ये बात कन्वे हमारी हुई है यहाँ पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप कार्यक्रम में जुड़ी हुई हैं और इसी तरह से बात करती रहा करिए। चलिए थैंक यू सो मच। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन हम ये बता दें अपने श्रोताओं को कि हमारे जो गेस्ट हैं वो बहुत अच्छी सिंगर्स भी हैं, दोनों की दोनों। तो पहले डॉक्टर रीता आप कुछ सुनाएंगी?
0: जी बिल्कुल, मेरा फेवरेट गाना।
1: हाँ सुनाइए प्लीज।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: आप हैं रेडियो डॉक्टर में और आज हम बात कर रहे हैं फिटनेस पर, फिटनेस मंत्रा। कुछ मैसेजेस हमारे पास हैं। एक मैसेज हमें किया है रवि जी ने और इन्होंने लिखा है दिल्ली से ही कि व्हाट लिमिट्स फ्लेक्सिबिलिटी मोर, मसल्स और नर्वस सिस्टम। और दूसरा इन्होंने पूछा है कि जनरली विच इज मोर इम्पॉर्टेंट इन योग, ब्रीदिंग या स्ट्रेचिंग, आप बताएं।
2: जी, आई वुड से कि योग में जो है नर्वस सिस्टम रेगुलेशन जो है विच इज मोर इम्पॉर्टेंट देन फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि इट विल फॉलो। अगर आपका मन शांत है, आपकी ब्रीदिंग जो है वो कोऑर्डिनेटेड है, तो डेफिनेटली आपकी मसल्स भी रिलैक्स होंगी।
1: अच्छा।
2: और दे आर इंटरलेटेड, बेसिकली हमारा जो माइंड और बॉडी है वो एकदम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और अगर आप तनाव में हैं, आप देखेंगे आपकी मसल्स टाइट हो जाती हैं, आप उतना फ्लेक्सिबल फील ही नहीं करते हैं। आपका मन शांत हो जाए तो डेफिनेटली आप देखेंगे आपकी नेक मसल्स, शोल्डर मसल्स, ये सब रिलैक्स हो जाते हैं, आपको बॉडी में पेन्स इस तरह की समस्याएं।
1: रिलैक्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ब्रीदिंग एंड स्ट्रेचिंग,
2: तो अगर हम क्या करते हैं जब हम कोई आसन कराते हैं किसी को, तो हम उसमें कहते हैं आप श्वास के साथ करें इसे। तो आप आसन में सिर्फ फिजिकल कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, आप साथ में उसको श्वास को लेके चल रहे हैं। तो हम इसमें, अगर मैं योग सूत्र की बात करूं, तो उसमें यही है कि स्थिर सुखम आसनम, आसन क्या है जिसमें हम स्थिर हैं और सुखी हैं। तो महर्षि पतंजलि ने कहीं भी यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी एज सच वर्ड की बात नहीं करी, स्थिरता की बात करी है और कम्फर्ट की बात करी है। तो जब आप स्थिर हैं, सुखी हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी विल फॉलो। एंड देन प्रतन शिथिल्य अनंत समापत्ति, यानी प्रतन की शिथिलता, मतलब रिलैक्स्ड वे में करने की बात की गई। आप जब रिलैक्स्ड वे में एक ही अभ्यास को बार बार बार बार करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी फ्लेक्सिबिलिटी फिजिकल लेवल पर इम्प्रूव होती है। एंड देन आफ्टर दैट आपके जो फिजिकल लेवल पर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो मस्कुलर टेंशंस हैं, जैसे कि जनरली तनाव में हमारी जो नेक मसल्स हैं, सब ऑक्सीपिटल्स, SCM मसल्स, ये सब टाइट हो जाते हैं, या सोआस मसल जो है जिसे हमारी इमोशनल मसल भी कहा जाता है, इनको स्ट्रेस रहता है, उनकी मसल्स टाइट हो जाती हैं। तो जब आप ब्रीदिंग पे काम करते हैं, श्वास पे काम करते हैं, मेंटल लेवल पर काम करते हैं, अभ्यास करते हैं, योग निद्रा इस तरह के अभ्यास करते हैं, तो आप देखेंगे उसमें एक एक मसल्स को, प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन इज देयर, एक एक मसल को हम रिलैक्स करते हैं। तो मन पे काम करके भी हम शरीर पे काम कर सकते हैं और शरीर पे काम करके हम मन पे काम कर सकते हैं।
1: जी जी, बहुत इंपॉर्टेंट ये बात भी थी। और देखिए, हमारे जो श्रोता है हमारे साथ जुड़ते हैं, वो बहुत सारी चीजें यहाँ पे सीखते हैं इस कार्यक्रम से। और ऐसे ही कुछ हमें बताया है हमारी इस श्रोता ने, परिधि है दिल्ली से लिख रही है, ग्रेट इन्फॉर्मेशन, वेरी गुड टॉपिक, मच नीडेड फॉर आर बिजी लाइफ स्टाइल। थैंक यू सो मच शालिनी जी। माई टेक अवेज फ्रॉम प्रोग्राम सो फार इज डिसिप्लिन एंड ग्रेटिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ओवरऑल फिटनेस, बोथ फिजिकल एंड मेंटल। तो ये हमारे श्रोता जब हमें बताते हैं कि हमारा प्रोग्राम जिस पर्पज से हम कर रहे हैं वो सही दिशा में जा रहा है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और आप भी अगर शेयर करना चाहें कि आप क्या सीख रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम से और आपका फिटनेस मंत्रा क्या है, क्योंकि कुछ लोगों का अपना अलग तरीका होता है फिट रहने का। कुछ लोग जिम जाते हैं, कुछ लोग वॉक करते हैं, कुछ लोग रन करते हैं, कुछ लोग साइकिलिंग करते हैं, कुछ योग करते हैं। तो आप अगर हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं और आप शेयर करना चाहते हैं कि आप किस तरह से अपने आप को फिट रखते हैं, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। एक लिसनर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो।
3: हेलो मैम, नमस्ते।
1: जी नमस्कार।
3: और डॉक्टर साहिबा को भी नमस्ते मैम।
1: अपना नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
3: जी, मैं गुरु चंद्रा बोल रहा हूँ, उत्तराखंड से।
1: जी जी, बताइए क्या पूछना है आपको।
3: तो मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मेरा एक्सीडेंट में एक पांव कट गया था, घुटने से ऊपर से कटा हुआ है, तो योगा के लिए जैसे मेरे को थोड़ा बलगम वगैरह बनता, कफ बनता है मेरे को, तो वो स्मोकिंग वगैरह थोड़ा करता हूँ तो कफ वगैरह बनता है, तो इसके लिए कुछ योगा है हमारे लिए मैम?
1: चलिए, मधु जी बता रही हैं आपको।
2: जी डेफिनेटली योग सभी के लिए है, आप डेफिनेटली योग कर सकते हैं। योग में बहुत सारे ऐसे अभ्यास है, जैसे यौगिक सूक्ष्मयाम की क्रियाएं हैं, वक्षस्थल शक्ति विकासक क्रियाएं कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो षटकर्म के अभ्यास हैं, जिससे हमारी शुरुआत भी की जाती है हठ योग में, तो कुंजल का अभ्यास बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। जैसे बोल रहे बलगम बनती है उसे बाहर निकालने में, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। तो आप जो है हमारे मोरारजी साई राष्ट्रीय योग संस्थान में भी आ सकते हैं, वी हैव अ ओपीडी हेयर स्पेशली फॉर पेशेंट्स जिन्हें तरह तरह की प्रॉब्लम्स हों। सभी आयु वर्ग के योग और सभी हेल्थ इश्यूज कंडीशंस, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जिन्हें हैं वो पेशेंट्स हमारे यहाँ आते हैं, उन्हें बहुत बेनिफिट होता है। तो हम योग की विभिन्न टेक्निक्स के थ्रू ने जो है हम ठीक उनको कोशिश करते हैं कि वो क्योर हो पाए, उन्हें हीलिंग हो पाए बेसिकली। तो वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। पर हाँ, एक और बात यह है कि आपको स्मोकिंग छोड़ना होगा, तो आप उसको धीरे धीरे जो है कम करें। विड्रॉल सिम्टम आते हैं कभी कभी एकदम से छोड़ने पर, तो आप उसके लिए जो है डॉक्टर की हेल्प लें। और साथ ही साथ जो है अगर आप यौगिक जो है दिनचर्या जो है उसको अपनाते हैं, यौगिक रूटीन फॉलो करते हैं, तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल।
1: और आपने बोला कि एक रिलैक्सेशन की

0: जरूरत होती है और मेंटल रिलैक्सेशन से फिजिकल वेलबींग हो सकती है। तो मैं हमने सुना है कि कुछ चैंट्स भी होते हैं
1: जी
0: जिसको बोलते हैं कि आप इसको सुने या आप उसके साथ कुछ चैंटिंग करें, तो उस तरह के कुछ मंत्र के बारे में या चैंट्स के बारे में बताएं या कुछ डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा सकें हमारे श्रोताओं को।
1: जी बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगी कि जो मंत्रास हैं वो जो है आसन है माइंड के लिए। तो अगर हम कहीं भी, हमें एंजाइटी होती है, कोई परफॉर्मेंस एंजाइटी लाइक बिफोर एग्जामिनेशन या बिफोर एन इंटरव्यू, या आप सोचिए कोई प्रोग्राम ही टीवी में आपका शुरू होने वाला है लाइव, तो उससे पहले अगर आप ओम चैंट कर लें,
0: यहाँ किया है
1: ठीक
0: आपने
1: है हम मन ही मन कर लेते हैं, ठीक है, तो बहुत ही
0: कर
1: हेल्पफुल होता है। इसके अलावा जो है हमारा जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना से प्रेरित जो
0: ले
1: मंत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिना, मैं यहाँ पे चैंट करना चाहूंगी, तो
0: ठीक
1: वो
0: है
1: अगर करें तो आप
0: हाँ
1: देखेंगे कैसे अब ब्रीदिंग एकदम रिलैक्स हो जाती
0: ओके
1: है। जी,

0: बहुत
1: वाह
0: बढ़िया,
1: वाह,
0: बहुत
1: क्या
0: बढ़िया,
1: बात है।
0: थैंक
1: सच
0: यू मैम.
1: में एक अभी ही ऐसा फील हुआ कि हाँ, इसको और सुना जाए, ये एक
0: सुनते रहे
1: अलग सी
0: सुनते रहे,
1: अनुभूति दे रहा
0: बहुत खूब
1: है ना। तो अभी तो हम नहीं ये ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद हमारा प्रोग्राम खत्म होगा तो हम एक सेशन आपके साथ
0: जी.
1: जरूर लेंगे।
0: चलेगा.
1: और ये इस तरह के जो आप चैंटिंग्स करते हैं, मुझे लगता है ये काफी रिलैक्स करता है अगर हम इसको बार बार
0: जी
1: सुने, बार बार सुने। इस तरह का कुछ आप लोग क्या भी किया जाता है डॉक्टर रीता? आप लोग जब कोचिंग करते हैं
0: जी
1: तो इस तरह का कुछ चैंटिंग्स भी उसमें आप इंक्लूड करते हैं?
0: जी चैंटिंग्स के साथ साथ हम लोग कुछ ब्रेथ एक्सरसाइजेस भी करते हैं, जिसमें मधु जी भी जैसे बोली थी, योगिक एक्सरसाइजेस. क्योंकि टेंशन जब हम लोग होती है, हम अपने लंग्स को पूरा नहीं यूज करते, हम सिर्फ ऊपर ऊपर से सांस लेते हैं. लेकिन लंग की कैपेसिटी है कि कम से कम 5 लीटर ऑक्सीजन ले सकता है, हम बस 1 लीटर में काम चला रहे होते हैं. तो जब बच्चे स्टेज पे जाते हैं और वो ब्लैंक हो जाते हैं, बिल्कुल उनको समझ नहीं आता क्या करना होता है, तो ऐसे सिचुएशन में हम उनको योगिक ब्रीदिंग सिखाते हैं. जब पेट को आप बलून की तरह फुलाते हैं और हाथ रखवा के उनको महसूस करवाते हैं, क्योंकि हम अपना चेस्ट बॉक्स ठीक से यूज नहीं करते, एक तो वो कराते हैं, ऑफ कोर्स ओम का उच्चारण कराते हैं, ताकि जैसे पहले भी किसी श्रोता ने बोला था कि आवाज को कैसे मधुर
1: जी
0: करें,
1: जी
0: तो आवाज को मधुर करवाने के लिए भी यही हम टेक्निक्स यूज करते हैं. प्लस उनको कुछ छोटी छोटी चीजें जैसे बांसुरी बजाना, क्योंकि उसमें आपका फोर्स लगता है जब आप बांसुरी को बजाते हो, तो आवाज को ठीक करने के लिए, आपकी आपको ठहराव देने के लिए मेंटली, जैसे कि आप स्टेज पे ब्लैंक नहीं हो जाएं. प्लस इसके बाद एक होती है प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, मतलब पैरों से उनको भींचना पड़ता है, पैरों के टोज से भींचते हुए ऊपर की तरफ आए और फिर पूरी बॉडी को एकदम टाइट करके, फिर धीरे धीरे एक एक बॉडी पार्ट करके छोड़ा, और लास्ट में जब शरीर से आपके पैरों के नीचे से वो अर्थ हो जाती है नेगेटिव एनर्जी. तो बेसिकली यही टेक्निक्स मैम थोड़ी योगिक भाषा में बता रही हैं, मैं थोड़ी मॉडर्न भाषा में बता रही हूँ, पर बेसिकली यही टेक्निक्स हैं जो आपको रिलैक्स कर सकती हैं.
1: जी
0: प्लस इसके साथ साथ बच्चों को ये भी सिखाया जाता है, क्योंकि यंगस्टर्स हैं, दिन में बहुत चीज़ें होती हैं उनके साथ, आजकल रिलेशनशिप इश्यूज है, ये है वो है, तो उनको ये भी सिखाते हैं हम लोग कि रात को सोने से पहले आपको अपने दिमाग को खाली करके सोना बहुत जरूरी है.
1: जी जी
0: क्योंकि
1: जी
0: अगर आप दिमाग को खाली नहीं करते हैं और वही चीजें लेके सोचते हैं, परेशानी आती रहेगी आती रहेगी, ठीक नहीं होंगे. तो उनको लिखाते हैं कि किस तरीके से आपको, दिन में पहला तो अच्छा क्या हुआ, दिन में बुरा क्या हुआ, अच्छा क्या हुआ उसके लिए थैंक यू, बुरा क्या हुआ वो पढ़ के, पढ़ना जरूरी है क्योंकि शरीर से निकालना है, जोर से एक बार बोल दो उसको, और फिर हम उसको टुकड़े टुकड़े करवा के उस कागज को हवा में फेंकवा देते हैं कि भाई ये गई अब तुम्हारी, अब इसकी तरफ मुड़ के नहीं
1: अच्छा,
0: देखना.
1: डज इट वर्क?
0: इट डज वर्क.
1: ओके.
0: बट देखिए, फेथ, भगवान को किसने देखा? नहीं देखा, पर हमें फेथ है कि भगवान है. तो ये सारी की सारी जितनी भी मॉडेलिटीज हैं वो फेथ पर चलती हैं. आप फेथ से करोगे तो आप कुछ भी पा सकते हैं. तो यस, ये चीजें भी हम लोग भी पैजेंट के या मॉडलिंग के वर्ल्ड में जरूर करवाते हैं.
1: जी. और देखिए, हमारे कुछ श्रोता जो हमारे साथ जुड़े हैं वो अपने फिटनेस मंत्र भी हमें भेज रहे हैं, जैसे हमने

0: उनसे इनवाइट किया था। आलोका जी लिख रही हैं 54 इयर्स की हैं, नोएडा में रहती हैं। आई एम प्रैक्टिसिंग योगा एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस डेली फॉर 45 मिनट्स। आई एम फीलिंग सम पेन इन माय शोल्डर्स बट आई एम वेरी डिसिप्लिन एंड प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। तो ये सारी चीज़ें ये फॉलो कर रही हैं। इन्होंने लिखा है कि मैं मॉर्निंग वॉक भी करती हूँ। कुछ थोड़ा एलर्जी है परफ्यूम डस्ट एंड पॉल्यूशन से, पर आपका सेशन मुझे बहुत इन्फॉर्मेटिव लग रहा है। तो थैंक यू सो मच आलोका जी। और आपके गाने की तारीफ आई है सिलचर आसाम से।
1: थैंक यू सो मच।
0: जी हमारे लिखने वाले श्रोता हैं मीरा सिंह, लिख रहे हैं कि बहुत अच्छा गीत आपने सुनाया और एक्सलेंट वॉइस, मुझे बहुत पसंद आया ये गीत।
1: शुक्रिया,
0: बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। और ये नरदेव सिंह चौहान जी ने लिखा है कोटद्वार उत्तराखंड से कि अगर प्रेम से रहा जाए और पर पीड़ा को समझा जाए, जिसका बहुत आजकल अभाव है, तो भी और शुद्ध पर्यावरण हो, तो ये सारी चीजें भी हमें फिट रख सकती हैं। क्या कहेंगे?
1: बिल्कुल, इनको मैं एक चीज और कहना चाहूंगी। इंसानों की आदत होती है कि हम पास्ट को साथ में लेके बहुत चलते हैं। कल क्या हुआ, इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, इतना पास्ट को जब हम साथ में लेके चलते हैं, वो तो बीत गई, अब उस पे मुड़के तो हम जा नहीं सकते, तो आज क्यों खराब करना है पास्ट के बारे में सोच सोच के। तो कई बार वो भी हमारे हेल्थ को खराब करता है जब हम पास्ट में लोगों को फॉरगिव नहीं करते या खुद को ही फॉरगिव नहीं करते, गिल्ट की फीलिंग में रहते हैं। तो कई बार खुद को भी फॉरगिव अगर आप करेंगे और आप खुद ही देखेंगे कि आपकी हेल्थ में भी बहुत परिवर्तन आएगा।
0: जी यहाँ पर एक म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, खूबसूरत सा गीत सुनकर वापस आते हैं। आप हमें यूं ही लिखते रहिए, बताते रहिए अपना फिटनेस मंत्र और रेडियो डॉक्टर के साथ जुड़े रहिए।

0: इस भागती दौड़ती जिंदगी में भी तन और मन को निरोग किया जाए।
1: क्यों ना रेडियो डॉक्टर सुनकर स्वस्थ रहा जाए।
0: रेडियो डॉक्टर प्रतिदिन दोपहर 3 बजे FM रेनबो 102.6 MHz पर।
1: कार्यक्रम का फीडबैक और सुझाव भेजे healthairdelhi@gmail.com पर।
2: आप हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में और थोड़ा सा ही समय बाकी है लेकिन बहुत सारे आपके मैसेजेस हैं। यशपाल जी हमें द्वारका दिल्ली से लिख रहे हैं, वेरी नाइस टॉपिक शालिनी जी। फॉर माय फिजिकल फिटनेस आई ट्राई टू फॉलो अ डिसिप्लिन्ड लाइफ, बैलेंस्ड प्रॉपर डाइट, मेंटल लेवल पे ओवर थिंकिंग नहीं करता हूँ, एंग्जाइटी इश्यूज पर कंट्रोल करता हूँ, मेडिटेशन एंड ब्रीदिंग भी मैं करता हूँ। बहुत सारी चीजें ये करते हैं, इसके अलावा भी कुछ छूट गया तो बताइए।
3: मेरे हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा छूट गया है, लोग उसको इग्नोर ही करते हैं इसलिए किसी ने बोला नहीं इसके बारे में।
2: अच्छा बताइए।
3: हाइजीन,
2: ओके,
3: हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वच्छ सफाई हमारे शरीर की बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए अगर आप हाइजीन नहीं रखेंगे आपके बालों में, आपके स्किन में, आप मुंह से बात करेंगे तो आपके मुंह से स्मेल आ रही है, आपके हाथ गंदे हैं, पहली चीज तो लोग ही आपको इग्नोर करने लगेंगे। फिर आप सोचेंगे लोग मुझे इग्नोर कर रहे हैं, फिर आप लोनलीनेस में चले जाएंगे, फिर मेंटल हेल्थ इश्यूज के आएंगे। और इसके अलावा इतना खूबसूरत शरीर भगवान ने हमें दिया जिसमें हमें ना जाने कितने साल रहना है, करोड़ों का शरीर है। सोचिए जिनके पास शरीर के कुछ हिस्से नहीं होते वो उनके लिए कितना तरसते हैं। हमारा एक एक हिस्सा करोड़ों का है और हम उसको इस तरीके से निग्लेक्ट करते हैं कि लोग कई बार ध्यान नहीं देते। तो हाइजीन बहुत जरूरी है ताकि लोग भी आपके साथ बात की करना चाहें, आप साफ सुथरे दिखें और नेचुरली ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक अच्छी पर्सनालिटी का भी होने का। तो हाइजीन का भी ध्यान ऊपर से नीचे,
2: बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने ऐड की। और समय हमारे पास थोड़ा सा कम है लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं करना चाह रही थी, क्योंकि हमने जो आज का जो विषय रखा है वो बिल्कुल, तो एक इंटेंशन है ये करने का कि 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं और इस पूरे साल में हम जो जो गतिविधियां करते हैं उसमें तेजी आती है। तो इस बार जब हम ये 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं, डॉक्टर मधु खुराना हमारे साथ हैं, किस तरह के बदलाव या किस तरह के अचीवमेंट्स पे आप बात करना चाहेंगी या कुछ नए इनिशिएटिव्स लिए गए उसके बारे में बताना चाहेंगी?
4: जी मैम, इस बार जो है हमारे जो योग महोत्सव में 13 मार्च को जो मनाया जाता है, विच इज द काउंट डाउन टू 100 डेज, लाइक वहां से शुरुआत हो जाती है, बिगुल बज जाता है, तो उसमें एक हमारा कैंपेन है आयुष मिनिस्ट्री का, योग 365, वो लॉन्च किया है हमारे माननीय जो आयुष मंत्री हैं उन्होंने। तो उसमें ये है कि आप एक टोल फ्री नंबर है उस पर जाकर, विच इज 1-800-315-7008, या फिर आप आयुष मिनिस्ट्री के पोर्टल पे जाकर आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं अपना नेम कॉन्टैक्ट नंबर देकर। वो आपको व्हाट्सएप पर लिंक भेजेंगे जिसमें कि 14 दिन का फ्री आपको योग जो है चैलेंज दिया जाता है, मतलब आप सेशन अटेंड कर सकते हैं। इस तरह की सुविधा दी जा रही है, सभी इससे जुड़ सकते हैं। 50th जो योग डे सेलिब्रेशन 2 मई को हुआ है काना शांतिवनम में, तेलंगाना में, हैदराबाद में, जहां पर एक रिकॉर्ड भी बना है जिसमें 6,000 से अधिक लोगों ने भुजंगासन का अभ्यास एक साथ किया है। भुजंगासन इज वेरी गुड आसन फॉर चेस्ट एक्सपेंशन, जो जिनको ब्रीदिंग की समस्या होती है, या फिर इट स्ट्रेंथन द बैक मसल्स, जिन्हें कमर दर्द की जो मस्कुलर इश्यूज रहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है, उसे दूर करने के लिए भी और उसकी प्रिवेंशन के लिए भी। तो उसका एक एशियन वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है और इस बार नया यही है कि हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये सिर्फ इंटरनेशनल योग डे तक ही योग सीमित ना रह जाए, आप इसे अपनी दिनचर्या का पार्ट बनाएं, यानी डेली योग अभ्यास करें, ऐसा मैसेज जो है हम देना चाहते हैं। उसी के साथ मैम ने जैसे बात करी हाइजीन की, तो मैं ये कहना चाहूंगी योग में भी हाइजीन का कॉन्सेप्ट आता है, नियम के अंतर्गत शौच की बात की जाती है। हमारे जो षटकर्म के अभ्यास है वो मैम ने जो आउटर जो बात करी कि हाइजीन की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में इंटरनल क्लींजिंग की बात भी योग करता है। और यौगिक जो एटीट्यूड है वो डेवलप करना बहुत जरूरी है लोगों में, जैसे कि ईश्वर पर निधान मैम ने बात करी, सरेंडरिंग एटीट्यूड की, एक्सेप्टेंस की, तो योग भी इसी की बात करता है, कर्म योग की बात करता है कि आप कर्म करें और फल की इच्छा छोड़ें। मैं कहूंगी लोग आसन तो कर लेते हैं, प्राणायाम भी करते हैं, हालांकि प्राणायाम उतना ज्यादा नहीं करते हैं, आसन ज्यादा करते हैं, बट उसके साथ यम नियम को फॉलो अगर करें तो

0: वो जो है उसका रिजल्ट कहीं गुना ज्यादा अच्छा आ
1: जी
0: सकता है।
1: जी
0: जी
1: जी जी बहुत ही ज़रूरी बातें आपने बताई, ये हमारे आज के प्रोग्राम की टेक अवेज हैं। आप भी चलते चलते डॉक्टर रीता क्या कहना चाहेंगी, क्या आपका मैसेज रहेगा हमारे इस कार्यक्रम के
0: मैं
1: माध्यम से?
0: श्रोताओं से ये कहना चाहूंगी कि जिंदगी की रेस जीतने से पहले शरीर को दौड़ने लायक तो बनाना पड़ेगा, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे इस जिंदगी की रेस में। तो मैं एक शायराना अंदाज में कहना चाहूंगी कि काम इतना करो कि हमेशा व्यस्त रहो, और पैसा इतना कमाओ कि हमेशा मस्त रहो, और व्यायाम इतना करो कि हमेशा स्वस्थ रहो। क्योंकि स्वास्थ्य जब तक आपके पास है तब तक सब कुछ है। जिस दिन स्वस्थ नहीं रहेंगे उस दिन आप कुछ भी जिंदगी में पाना चाहेंगे तो भी पा नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर हेल्थ है तो वेल्थ है। किसी टीचर ने बच्चों से एक बहुत सुंदर कुर्सी दिखा के पूछा था कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट भाग कौन सा है।
1: जी
0: किसी ने कहा पीठ, क्योंकि पीठ लगती है, किसी ने कहा हत्था जिसपे हाथ रखते हैं, पैर रखते हैं, अलग अलग चीजें बताई। लेकिन टीचर ने कहा नहीं, ये कुर्सी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, कुर्सी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कीलें जो इसे जोड़ के रखती हैं। तो ये ही बात है कि जिंदगी की कीलें जो हमें जोड़ के रखती हैं, जैसे हैप्पीनेस है, हमारा एनर्जी है, लव है, पीस है, हार्मनी है, गुड रिलेशनशिप्स हैं, वो कीलें हैं जो हमारे शरीर को जोड़ के रखती हैं। शरीर का कितना भी ख्याल रख लो लेकिन अगर कीलें आपकी कहीं ना कहीं ढीली पड़ गई तो कुर्सी गिरेगी ही गिरेगी। तो
1: जी
0: ये भी बहुत
1: बहुत ही
0: जरूरी
1: प्यारा सा एग्जाम्पल है और याद रखने लायक है। और हमारे इस प्रोग्राम की कीले तो हमारे श्रोता हैं जो हमारे साथ जुड़े रहते हैं और मजबूती से जुड़े रहते हैं, इसीलिए हमारा कार्यक्रम पसंद किया जाता है। हमारे श्रोता हमें लिखते हैं कि उसको पसंद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रविंदर पाठक जी, आशा पाठक जी नीदरलैंड से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। दिनेश अजय गोकुलपुरा दिल्ली से आप हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं, किरण जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और इम्तियाज मोहम्मद इम्तियाज, सलमा बेगम हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ी रही, बहुत सारे कोमल चंद साहू छत्तीसगढ़ से इस कार्यक्रम में जुड़े रहे। सबके सवाल तो हम नहीं ले पाए पर धन्यवाद देना चाहेंगे। इसी तरह से आप लिखते रहिए, सुनते रहिए और अपना पसंदीदा कार्यक्रम लिखकर हमें बताते रहिए कि कैसा लग रहा है। आप हमें लिख सकते हैं healthaiadelhi@gmail.com पर। अब स्वीकार करिए मेरा नमस्कार और धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे गेस्ट डॉक्टर मधु खुराना को। आप योग स्पेशलिस्ट हैं मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग में और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट डॉक्टर रीता गंगवानी आप पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट कोच हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों
0: बहुत
1: यहाँ आए।
0: शुक्रिया,
2: धन्यवाद मैम।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान

जान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग

0: आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: तो पार्टी शुरू हुई है।
4: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
5: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही।

0: फिर भी मेरा मन प्यासा।
1: वाह जी वाह जी वाह, आज जी तुसी लास्ट
0: म्यूजिक
1: ट्यों ट्यों करती ना।
0: चल रहा है।
1: आ वाह जी वाह, मुंह तो ही म्यूजिक चला रहे हो, तुसी गाने भी गा लेने नाले मुंह नाल म्यूजिक भी चला लेने हो,
0: हाँ जी मैडम जी,
1: इन्ना टैलेंट कितों आया शमी जी।
0: मैडम जी अपनी आकाशवाणी तो आया जी मैडम।
1: वाह जी वाह जी वाह, चलो बड़ा वधिया लगा तुहाडे नाल गलबात करके। ते हुण गाना दसो किहड़ा सुनना तुसी।
0: मैडम गीता जी तुहानूं सुनाया सी कंठकलेर दा इंतजार।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए।
0: शुक्रिया मैडम जी।
1: ते शमी जी तुसी ना मुंबई आ सकते हो।
0: हाँ जी
1: मैं क्या मुंबई आ सकते हो, तुसी गाना बहुत सोहना गाया है।
0: मौका मिल जाए सही है।
1: शुक्रिया जी
0: मैडम
1: फोन।
0: मौका इतने मिल जाता रेडियो उपर।
1: हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल,
0: हाँ जी
1: शुक्रिया जी फोन करने के लिए,
0: शुक्रिया मैडम जी।
1: शुक्रिया जी। तो मैं लगता है कि शमी जी ने चाह पीते पीते जरा गला गर्म किया है ना, तो बड़ा ही सोहना सानू गाना सुनाया। तो इदा ही असं थोड़े सारे के भी फोन की उड़ीक कर रहे हैं कि तुम कदों कॉल करोगे तो अपनी आवाज़ के सानू गाना सुनाओगे। फिलहाल शमी जी ने बहुत ही सोहना गाना सुनाया, तो उन्होंने जी फरमायश है असं जरूर पूरी करा। कंठ क्लीर होर आवाज़ में गीत सुना जा रहे हैं इंतजार, तो मैनू इंतजार है थोड़ी कॉल्स का।

0: एक जरूरी सूचना, असी आकाशवाणी जलंधर दे FM रेनबो चैनल 102.7 मेगाहर्ट्ज़ तो बोल रहे हैं। ICC विमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप तहत ऑस्ट्रेलिया ते इंग्लैंड दिया महिला टीमां विचकार लॉर्ड क्रिकेट्स ग्राउंड लंडन विखे खेडे जाने वाले T20 क्रिकेट कप दे फाइनल मैच दी अज ऑफ ट्यूब कमेंट्री अपने दिल्ली केंद्र तो शाम 6:30 तो सुनावांगे, पर FM रेनबो दे प्रोग्राम तुसी FM रेनबो जलंधर ऐप ते सुनदे रहोगे।
1: आकाशवाणी जलंधर तो सुनो ICC T20 महिला विश्व कप दे मुकाबलियां दी पल पल दी खबर, सेमीफाइनल ते फाइनल मुकाबलियां दा अखी वेख्या हाल तुसी सुन सकोगे आकाशवाणी जलंधर दे FM रेनबो चैनल तो 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते।

0: हाँ जी, प्रोग्राम तुसीं इंजॉय कर रहे हो। हैलो जलंधर, अपनी दोस्त ते होस्ट आरजे रिया दे नाल। ते अज साडे नाल जिहड़े अगले साडे कॉलर ने जुड़ गए ने, आओ उन्हां तों आपां गाणा सुणदे हां, गल्लां बातां सुणदे हां। हैलो,
1: तो दूर है मुझसे और पास भी है,
0: हाय हाय,
1: तेरी कमी का कहीं एहसास भी है।
0: हाय हाय हाय हाय,
1: दोस्तों हैं लाख लाखों जहां में मेरे रिया मांझी, मगर है लो जलंधर प्रोग्राम मेरा प्यारा भी है और खास भी है।
0: वाह जी वाह जी वाह। सतीश जी, तुसी आप लिखा है शेर या इंटरनेट तो चकिया है?
1: नहीं मैडम, इंटरनेट में चला नहीं आता जी, हमने बनाया जी अपने
0: ये, हमने हमने बनाया ये, टैलेंट कितों आया इतना ज्यादा?
1: बात ना जी, रेडियो तो सीखी तो सारा कुछ।
0: सतीश जी की हाल चाल ने?
1: हाल चाल बढ़िया मैडम जी, सदे आराम कर रहे हैं।
0: आराम कर रहे हो, वाह जी वाह।
1: असि
0: तुहाडा आराम थोड़ा जा खराब कर दिए हुण।
1: नहीं मैडम, मजा आ रहा जी, खराब
0: मजा आ रहा है।
1: मजा, हाँ मजा।
0: चलो फिर तुसी भी हुण साडी अज फरमाइश पूरी करो, केड़ा गाना सुना रहे हो सानू अज?
1: मैडम गाना सुनो दे।
0: हाँ जी बिल्कुल,
1: गाना सुना दो तुमने तो मैडम। केड़ा पंजाबी? एक पंजाबी सुना या पहले हिंदी सुना? मैं तो निकले ना
0: जो तुहाडी
1: लो जी,
0: इच्छा।
1: सुनो फिर। एक चीज मांगते हैं हम तुमसे पहली बार, पहले चीज का नाम बताओ, देखो हम पे शक ना लाओ, उल्टी सीधी, अच्छा जी उल्टी सीधी चीज कभी ना मांगे सच्चा प्यार। एक चीज मांगते हैं हम तुमसे पहली बार। हाँ जी,
0: वाह जी वाह जी वाह। ए जिहड़ी तुसी पिछे फीमेल कौन सीगे बरीक जी आवाज दे विच, हैं
1: मेरी वाइफ है।
0: तुहाडी वाइफ ने कि तुसी अपनी वाइफ दी आवाज कढ रहे सीगे? कोई गल नहीं, कोई गल नहीं सतीश जी, सानूं सब पता लग रहा है,
1: नहीं
0: असीं
1: मैडम
0: देख
1: जी,
0: पा
1: मैं
0: रहे
1: सी
0: हां।
1: नहीं, मैं सीगी मैडम जी।
0: सच्ची तुसी सीगे? हेलो,
1: हाँ जी मैं सीगी मैडम जी।
0: हेलो सतीश जी, गल
1: हेलो,
0: करायो इन्हां नाल।
1: हाँ जी, हाँ जी मैडम जी।
0: नहीं मैं हुण समझ नहीं पा रही, सतीश जी तुसी अपनी वाइफ दी आवाज कढ रहे हो या सच्ची तुहाडी वाइफ ने?
1: नहीं मैडम जी, गल करो तुसी, इन्हां नाल करोगे?
0: कराओ तुसी।
1: हेलो,
0: नमस्कार
1: मैडम जी।
0: नमस्कार जी, की हाल चाल ने?
1: ठीक है मैडम जी, तुसी सुनाओ, बहुत बढ़िया प्रोग्राम पेश कर रहे हो तुसी।
0: थैंक यू सो मच जी। तुहाडा की शुभ नाम है जी?
1: मेरा रोजी गुलियानी।
0: रोजी गुलियानी। रोजी गुलियानी जी, हुण तुसी कोई गाना सुना दो, आए तो है गई हूँ प्रोग्राम च।
1: नहीं
0: असि तुहाडी आवाज च भी सुनना, तुहाडे से इन्ना प्यारा तुसी गाया, असि तुहाडी आवाज च भी सुनना, सुनाओ कुछ।
1: नहीं ये सुनाएंगे, लो जी गल कर लो, मैं खतवा जी फोन लाने हैं मैडम जी। हाँ जी
0: सतीश जी,
1: हाँ जी, मैं
0: तुहाडी
1: सुना
0: वाइफ ने
1: सुना।
0: गाना नहीं सुनाया सानू?
1: नहीं वो मैडम, एक तो मजा है नहीं, वो रेडियो च थोड़ा जा दूर ही रख दे रहे।
0: अच्छा जी,
1: मैं सुना देना तो पंजाबी, एक
0: सुना
1: लिया
0: दियो जी,
1: लिया।
0: सुना दियो, सुना दियो जी, सुना दियो।
1: ठंडा हो जाओ चूल्हा चौंका, बेड़ा सुनम सुना, दाचा किंजे दाल बनावा, किंजे आटा गुन्ना, गुन्ना नी याद आओगी। ओए होए नी, मैं कह नी जदों, हाय नी कदों, जदों तुर जाएंगी
0: ओ पेके जान वाली है,
1: हाय नी किन्ना,
0: मैं कह नी किन्ना।
1: ओए होए नी किन्ना चेर लाएंगी। ठीक है जी, और
0: वाह
1: कहा
0: जी वाह जी वाह। सतीश जी बहुत वधिया लगा तुहाडे नाल गलबात करके, ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਹੋ ਸੀਗੇ।
1: ਉਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਾ ਛੁੱਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਓ, ਕਰਦੀ
0: ਹਾਂਜੀ
1: ਛੁੱਟੀ।

0: जी दोस्तों, हुणे तुसीं बहुत ही प्यारा जिहा गीत सुनिया। क्यों प्रीति, बिल्कुल सही गल कही है ना। मैं
1: बिल्कुल रितिका, ते मैं असीं गल कर रहे सी ना इक खास शख्सियत दी जी। ओ साडे जिहड़े अगले शख्सियत ने ओह वी बहुत खास ने, क्योंकि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दा जिहड़ा सब तों वड्डा नाम है, फादर ऑफ इंडियन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, सिर्फ उहनां दे नाम तों ही जाणिया जांदा है ते उहनां तों ही शुरू होया सी।
0: बिल्कुल दोस्तों, जिवें कि प्रीति ने दस्सिया, उन्होंने फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी किया जाता है। जी दोस्तों, अज असीं गल कर रहे हैं डॉक्टर लाला जी सिंह जी की, जो कि भारत के एक महान विज्ञानी रहे ने, ते उन्होंने भारत के डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के पिता माँ के वजों भी जाने जाता है। तो अज उन्होंने जी बर्थ एनिवर्सरी है। उत्तर प्रदेश के एक साधारण किसान परिवार में जन्मे डॉक्टर लाला जी सिंह ने 1988 भारत में पहली स्वदेशी डीएनए तकनीक जी विकसित की, जिसने विज्ञान जगत में एक इतिहास रचिया। तो उस ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰੀਤੀ, ਉਸ

मैच चल रहा है, सो आज तुसी मेरे नाल इंजॉय करोगे फिल्मी दुनिया प्रोग्राम यानी महक दे नाल। जी हाँ, मैं तुहाडी अपनी दोस्त महक ते प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है जी। फिल्मी दुनिया ओ प्रोग्राम जिदे विच असी बहुत सारियां गल्लां करदे हां, असी कलाकारां बारे गल करदे हां, असी उन्हां परसनैलिटीज़ दी गल करदे हां जिहड़ी साडी जिंदगी दे विच बहुत कुछ सिखा के गए ने सानू उन्हां दियां फिल्मां दे जरिए, उन्हां दे गीतां दे जरिए। म्यूजिक डायरेक्टर्स, कंपोजर, इन्ने सारे लोग ने ना, मैं किना किना दी गल्लां करां मैं भी कन्फ्यूज़ हो जांदी है। लेकिन अज असी एक इहो जिही परसनैलिटी बारे गल करांगे जिन्हां ने सानू म्यूजिक दिता, लेकिन उन्हां नू उन्ना ज़्यादा नाम नहीं मिलिया। शायद तुसी भी उन्हां दा नाम घट ही सुनिया होएगा या फिर उन्हां दा जिहड़ा म्यूजिक है वह भी घट सुनिया होएगा, लेकिन अज इस प्रोग्राम दे विच असी उन्हां नू जरूर सुनांगे। ते 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते चल रहा है जी ICC वुमेन्स क्रिकेट T20 दा वर्ल्ड कप। इस लई असी जुड़े हाँ न्यूज़ ऑन एयर एप्लीकेशन ते। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਔਨ ਏਅਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਊਜ਼ ਔਨ ਏਅਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਇੰਡਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ 102.7 ਮੈਗਾਹਰਟਸ 'ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੁਮੈਨਸ ਕ੍ਰਿਕਟ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ। ਸੋ ਚਲੋ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ट्रॉफी लई आमने सामने ने। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जिहड़ा है ओह जित के पहला बॉलिंग जिहड़ी है ओह चुनी। इंग्लैंड की शुरुआत चंगी नहीं रही, लेकिन ओपनर एमी जॉन्स सिर्फ 6 रन बना के आउट हो गई। इस तो बाद डैनी ने कैप्टन ते नैट स्काइवर ब्रंट ने इनिंग नू संभालिया ते संभालन की कोशिश की। लाइव स्कोर के मुताबिक इंग्लैंड नू शुरुआती झटका लग चुका है ते मैच बहुत रोमांचक मोड़ ते पहुँच गया है। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਹੈ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ICC ਜਿਹੜਾ ਵੁਮੈਨਸ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ 2026 ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਟੀਮ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ।

कोशिश करियो गीत थोड़े जे नवे हो जान, ज्यादा पुराने ना दियो, या फिर रिपीट जेडे गीत तुसी सुनते हो डेली वो गीत भी तुसी फरमाइश ना दियो। मैं चेक करांगी ते ओदे हिसाब दे नाल ही मैं तुहानू दसदियां, पहले ही मैं फरमाइश उदों ही प्ले करनी है जदों मैनू लगेगा कि हाँ तुसी ये फरमाइश सानू पहला नहीं भेजी सी, क्योंकि नवे नवे गाने सुनो, न्यू एनर्जी अपने अंदर पाओ, ता ही तो मज़ा आएगा। तो चलो जी ओदे लई तुसी नंबर नोट डाउन कर लो, 9855101027। तो चलो जी अग पहला गीत मेरी फरमाइश का ही तुसी सुन लो, हाय हाय मिर्ची उफ उफ मिर्ची। ये गीत असं सुनते हैं तो गीत दे उस पार मिलते हैं साडे दोस्त दी फरमाइश दे नाल।

नमस्कार आदाब, और आप सबका दिल से स्वागत है खूबसूरत महफिल शामे गज़ल में। मैं हूं आपकी अपनी दोस्त महक, और अगले आधे घंटे तक इस खूबसूरत महफिल में अल्फाजों गज़लों के ज़रिए दिलों में ठंडक और सुकून लेकर आएंगे। आपको पता है, हर गज़ल एक एहसास है, हर शेर एक कहानी है, और हर सुर में छुपी है मोहब्बत, यादें और ज़िंदगी के खूबसूरत रंग, जो अपनी चाय या कॉफ़ी के कप के लिए नहीं, बल्कि अपने लफ्ज़ों के ज़रिए अपने इमोशंस के लिए जाने जाते हैं। तो आप चाय पी रहे हो या कॉफ़ी पी रहे हो, कुछ भी, या खाना खा रहे हो।

अपने लफ्ज़ों के ज़रिए अपने इमोशंस के लिए जाने जाते हैं। तो आप चाय पी रहे हो या कॉफ़ी पी रहे हो, कुछ भी, या खाना खा रहे हो, रेडियो को थोड़ा सा तेज़ कर लीजिए क्योंकि अब गज़लें दिल तक जाएंगी। और आज का शब्द है हकीकत। हकीकत क्या है, क्यों है, कैसी है, चित्रा सिंह की आवाज़ में सुनते हैं।

हकीकत की धूप जब चेहरे पर पड़ती है ना, तब ख्वाबों की छांव धीरे धीरे सिमट जाती है और हर मुस्कुराहट के पीछे खुशी हो जरूरी तो नहीं। कभी कभी लोग हकीकत छुपाने के लिए भी मुस्कुरा देते हैं।

वक्त ने बस इतना सिखाया है कि वक्त ने बस इतना सिखाया है हकीकत को कबूल कर लो, हकीकत को कबूल कर लो, क्योंकि ख्वाब अक्सर अधूरे ही रह जाते हैं।

आईने झूठ नहीं बोलते और वक्त धोखा नहीं देता। आईने झूठ नहीं बोलते और वक्त धोखा नहीं देता। जो दिख जाए वही हकीकत है, बाकी सब भ्रम होता है।

पुराने नगमों की खुशबू में दिल फिर से महक उठता है। हर धड़कन जैसे किसी मीठी आवाज़ से बहक उठता है। ये गीत नहीं लम्हों का जादू है, दिल से हर दिल चहक उठता है। आपने ट्यून किया हुआ है 102.7 मेगाहर्ट्ज पे प्रोग्राम एक प्यार का नगमा है और आप सुन रहे हैं हमें न्यूज़ ऑन एयर एप्लीकेशन पे। तो दोस्तों इस प्रोग्राम दे विच प्यार दे नगमियां दी गल हुंदी है, वो मिठे मिठे हिंदी गीत जिन्हां दे विच रूहानगी हुंदी है।

हकीकत हमेशा मीठी हो ये ज़रूरी नहीं। हकीकत हमेशा मीठी हो ये ज़रूरी नहीं, मगर जो इसे अपना ले वो ज़िंदगी जीना सीख जाता है।

रात का अंधेरा कुछ कह रहा है, चांद अपनी चांदनी में बह रहा है। रात का अंधेरा कुछ कह रहा है, चांद अपनी चांदनी में बह रहा है। रात का अंधेरा ये संकेत दे रहा है, चलो सो जाए ये कह रहा है, पर सोना ना सितारों का है कहना।

रात का शौकीन हूँ मैं चांदनी पाले रखता हूँ। रात का शौकीन हूँ मैं चांदनी पाले रखता हूँ। कोई और ना देख ले सामने उजाले रखता हूँ।